ये विविध भारती है, झरोखा में लीजिए सुनिए हमारे आज के शेष प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। अब से थोड़ी देर में ठीक 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का भाग 302। 6:45 पर संगीत सहिता कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। आज आपको सुनवाएंगे इस श्रृंखला की 5वीं कड़ी। कलाकार हैं गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। इसी कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे शाम 6:45 से। 7 बजे सुनवाए जाएंगे भूले बिस्तरे गीत। 7:30 पर आप सुनेंगे हम है राही प्यार के। 8:15 पर होगा कार्यक्रम त्रिवेणी। 8:30 पर सुनिएगा चित्रलोक। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम श्रोताओं आज केंद्रित है संगीतकार सलिल चौधरी पर। दिन में 10 बजे पिटारा में आप सुनेंगे गीतों भरी कहानी आखिर कब तक, लेखिका रश्मि वर्मा। 11 बजे सुनिएगा चित्रपट संगीत। 11:30 पर आप सुनेंगे मैटिनी शो। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित शूटिंग कोच नेहा चौहान से यूनुस खान की बातचीत आपको सुनवाएंगे। 12:05 पर होगा कार्यक्रम यादों की महफिल। 1 बजे आप सुनेंगे सुरीला सफर। 2 बजे सुनिएगा

कर 30 मिनट पर होंगे सदाबहार नगमे। तीन बजे आप सुनेंगे मन चाहे गीत। 3:30 पर नाट्य तरंग में आपको सुनवाएंगे नाटक आग की किरकिरी का पहला भाग, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बांग्ला उपन्यास चोकेर बाली का रेडियो नाट्य रूपांतरण और निर्देशन किया है नंदलाल शर्मा ने। शाम 4 बजे पिटारा में आप सुनेंगे बॉम्बे टॉकीज गायिका दीपाली सहाय से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग आपको सुनवाएंगे प्रस्तुति तेजश्री कामले की। शाम 5 बजे आप सुनेंगे छाया गीत। 5:30 पर होगा कार्यक्रम तराने नए पुराने। छह बजकर 35 मिनट पर सुनिएगा कार्यक्रम संध्या रंजन। 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुन सकेंगे। 7 बजे पार्श्व गायिका आशा भोसले द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत आप सुनेंगे जिज्ञासा। डॉक्टर योगिनी मोहरे से यूनुस खान की बातचीत सुनवाई जाएगी। 8 बजे हवा महल कार्यक्रम में आप सुनेंगे सुनो कहानी, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी पिंजर का पहला भाग आपको सुनवाएंगे। वाचन स्वर ममताज सिंह, प्रस्तुति हर्षवर्धन गवई की। 8:15 पर आप सुनेंगे चित्रलोक और 9 बजे होगा कार्यक्रम। 9 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम आपके लिए। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है निर्देशक विदु विनोद चोपड़ा पर। 10 बजे आप सुनेंगे छाया गीत और 10:30 पर होगा कार्यक्रम ढलती जाए रात। झरोखा के अंतर्गत श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे हमारे आज के शेष प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण।

वानर सभी दिशाओं से ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारी शिलाखंड तथा वृक्ष खेल ही खेल में उखाड़ लाते हैं। नल और नील उन्हें गढ़कर सेतु का निर्माण करते हैं। ये सुंदर रचना देख श्री राम अति प्रसन्न हैं। उस स्थल को अत्यंत रमणीय और उपयुक्त देखकर वे वहां शिव की स्थापना करने का संकल्प करते हैं।

0: नमस्कार। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे। इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने। आइए सुनते हैं आज इस श्रृंखला की पांचवी कड़ी।
1: नमस्कार श्रोताओं, स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना श्रृंखला की इस कड़ी में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हैं सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे जी। शकुंतला जी, किराना घराने की गायकी की विशेषताओं की बात हो रही है, उसके अनूठेपन की बात हो रही है, तो कौन सा वो निराला अंदाज है इस गायकी का जिसके बारे में आप चर्चा करेंगी आज?
2: मुझे लगता है आज हम किराना घराने में विलंबित लय का जो विशेष महत्व है।
1: अच्छा।

0: अच्छा,
1: उनके बारे में जानेंगे।
0: जी जी।
1: विलंबित लय,
0: हाँ,
1: ये भी हमारी खासियत है। राग विस्तार के लिए अनुकूल है हमारा घराना, किराना घराना।
0: जी।
1: और राग विस्तार के लिए विलंबित लय का प्रयोग जो है,
0: जी जी,
1: इसलिए किया जाता है ताकि हर एक स्वर को पर्याप्त समय देकर उसकी शुद्धता और सौंदर्य को उभारा जा सके।
0: जी।
1: राग का क्रमिक विकास अच्छी तरह से हो सके। धीमी लय में कलाकार राग के प्रत्येक स्वर और उसके भाव का क्रमशः विस्तार करता रहता है, इससे राग का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है और प्रभावशाली बनता है। मिंड और श्रुति का प्रभाव और प्रयोग, विलंबित लय कलाकार को मिंड, श्रुति और सूक्ष्म स्वर लगाव का सुंदर प्रयोग करने का अच्छा अवसर यहाँ पे मिलता है। यही इस घराने की प्रमुख विशेषता है। जयंत
0: जी, जी, जी।
1: भावपूर्ण प्रस्तुति करने के लिए भी इसका बहुत ही आधार होता है। धीमी गति में क्या होता है, गायन करने के लिए प्रत्येक स्वर का भाव अधिक प्रभावी और श्रोताओं तक पहुंच जाता है और संगीत अधिक रसपूर्ण हो जाता है।
0: जी।
1: स्वर साधना का प्रदर्शन करने के लिए भी अच्छा होता है। लय में गायक अपनी स्वर साधना, स्वर पर नियंत्रण और धैर्यपूर्ण प्रस्तुति का परिचय देता है। इसी कारण किराना घराने की गायकी जो है उसको अत्यंत गंभीर और ध्यानमय मानी जाती है।
0: अच्छा।
1: अध्यात्म के बहुत ही पास जाती है ये गायकी। विलंबित लय जब हम प्रस्तुत करते हैं राग, तब श्रोता को एकाग्र होकर सुनने के लिए प्रेरित करता है।
0: अच्छा।
1: और संगीत का सौंदर्य धीरे धीरे मन में उतरता रहता है। अगर आप सोचे पंडित भीमसेन जोशी,
0: जी,
1: उनका जो विस्तार है, विलंबित लय की जो पद्धत है, जो ढंग है,
0: जी,
1: वो इतना मन को सुकून देता है, इतना अच्छा लगता है। अभी आप शुद्ध कल्याण उनका सुनेगा।
0: अच्छा, तो हम पंडित भीमसेन जोशी का गाया राग शुद्ध कल्याण सुनेंगे।
1: उससे पहले मुझे एक बात बोलनी है जयंत
0: जी,
1: जी,
0: जी।
1: किराना घराने पर एक आरोप किया जाता है कि ये घराने के लोग एकदम आसान राग है,
0: हाँ,
1: वो चुनते हैं, ठाट प्रधान राग ही चुनते हैं और उतना ही उनका लिमिट है।
0: अच्छा,
1: ये क्यों होता है? राग चुनना जो है, तो हाँ, राग चुनते समय हर किराना का जो पद्धत है, एक एक स्वर का लगाव लेकर आगे जाने का और राग का भाव और राग की शुद्धता रखने के लिए आधार होता है।
0: जी।
1: और किराना गायकी दिखाने को मदद करती है। और वैसे देखा जाए तो सब घराने में अपने अपने राग रहते हैं।
0: अच्छा।
1: जयपुर घराने में उनके सब अनवट राग रहते हैं, आगरा में उनकी अपनी खासियत है, ऐसा सब घराने में होता है। चलो शुद्ध कल्याण सुनेंगे, उनका आलाप पर आप ध्यान दीजिएगा, ख्याल की बढ़त वो कैसे, छोटा एक दो आवर्तन ही सुनेगा,
0: हाँ,
1: लेकिन उनमें जो डेप्थ आपको मिलेगा,
0: जी जी,
1: उसका जो हम फील करेंगे।

0: बात है। पंडित भीमसेन जोशी जी का गाया राग शुद्ध कल्याण और उसकी जो विलंबित लय में बढ़त थी, आप जैसा कह रही थी कि उसकी जो गहराई है उसे महसूस कर रहे थे।
1: शुद्ध कल्याण का कैसा है वो बहुत पास सब राग है, भूप है, देशकार है, बहुत सारे राग जायत कल्याण है। और उसका जो निषाद आते समय और मध्यम जो लगाते हैं ना, उसकी जो सौंदर्यता है, ये किराना घराने में भीमन्ना का एक अलग ही ये है। और उसी राग में सब गाने तो सब प्योर नहीं रहते हैं राग का, लेकिन गाना बहुत अच्छा है। चोरी चोरी फिल्म का रसिक वेलामा।

0: के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों से प्रौद्योगिकी अपनाने और नवीन शिक्षण पद्धतियों को लागू करने का आग्रह किया। 48 शिक्षकों को आज राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। सरकार ने ISO टैंक कंटेनरों में पेट्रोलियम के आयात और परिवहन के लिए 3 साल की अनुमति तथा कड़े सुरक्षा नियमों का प्रस्ताव रखा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत संघर्ष समाप्त करने में यूक्रेन और रूस के साथ निरंतर संपर्क में है। संयुक्त राष्ट्र ने अफ्रीका का सटीक आकार दर्शाने वाले नए विश्व मानचित्र को अपनाने के पक्ष में मतदान किया। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण अहमदाबाद में आज से शुरू और दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों से प्रौद्योगिकी अपनाने और नवीन शिक्षण पद्धतियों को लागू करने का आग्रह किया है। शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों की प्रतिभा निखारने और चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज 48 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
1: हर वर्ष 5 सितंबर को पूरे भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह दिन देश के पूर्व राष्ट्रपति, प्रसिद्ध शिक्षाविद, लेखक और दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह अवसर राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों और शिक्षाविदों की महत्वपूर्ण भूमिका का सम्मान करता है। शिक्षक विद्यार्थियों के जीवन को बदलते हैं, पीढ़ियों को दिशा देते हैं और समाज की नींव को मजबूत करते हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह नई दिल्ली 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। चयनित 48 शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और 6 केंद्रीय सरकारी संगठनों से हैं। राष्ट्रपति उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल शाम राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेताओं से बातचीत की। श्री जोशी ने कहा कि शिक्षक

युवकों को बच्चों को 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और उन्हें हर क्षेत्र में सक्षम बनाने की दिशा में काम किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। इसकी स्थापना वर्ष 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। पिछले 100 वर्ष में इस संस्थान ने कई विद्वान, पेशेवर और राष्ट्र निर्माण में

0: एक राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन है। उपराष्ट्रपति गिंडी में इंडिया वॉल्व्स पंजिका का विमोचन भी करेंगे। सरकार ने आईएसओ टैंक कंटेनरों में पेट्रोलियम के आयात और परिवहन के लिए 3 साल तक की अनुमति देने का प्रस्ताव किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पेट्रोलियम संशोधन नियम 2026 का मसौदा जारी किया है। इसमें आवेदन प्राप्त होने पर 7 कार्य दिवस में मंजूरी देने का प्रस्ताव है। इसके अनुसार पेट्रोलियम से भरे या पेट्रोलियम के लिए इस्तेमाल होने वाले आईएसओ टैंक कंटेनरों को बिना अनुमति आयात नहीं किया जा सकेगा। आवेदन पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन की ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से करना होगा और इसके साथ जरूरी तकनीकी और सुरक्षा दस्तावेज जमा कराने होंगे। मंत्रालय ने मसौदे पर 30 दिन के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। प्राप्त सुझावों पर विचार करने के बाद नियमों में बदलाव किया जाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली के भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस कड़ी में ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन कल शुरू हो गया। सम्मेलन के लिए व्यापक स्तर पर सुरक्षा और तैयारियां की जा रही हैं। आज मोटर कारकेड का पूर्वाभ्यास किया जाएगा। दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार पूर्वाभ्यास सवेरे 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। इस दौरान भारत मंडपम और आसपास के क्षेत्रों में 35 से अधिक सड़कों पर यातायात नियंत्रित रहेगा। यातायात पुलिस ने रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त समय लेकर निकलने और वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत संघर्ष समाप्त करने के लिए रूस और यूक्रेन के लगातार संपर्क में है। वॉर्सो में पोलैंड के विदेश मंत्री राडोस्लाव सिरोस्की के साथ बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि युद्ध का कोई विजेता नहीं होता।
4: India believes that endless war.
5: भारत का मानना है कि अंतहीन युद्ध समाप्त होना चाहिए और युद्ध का कोई विजेता नहीं होता। हर अतिरिक्त दिन का अर्थ है अधिक मौतें, अधिक तबाही, दोनों देशों के लिए अधिक नुकसान और बाकी दुनिया के लिए अधिक लागत। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इस चिंता को सार्वजनिक रूप से व्यक्त किया था। इसलिए हमारे प्रयास बातचीत और कूटनीति को बढ़ावा देने पर केंद्रित होने चाहिए।
4: प्रमोटिंग डायलॉग एंड डिप्लोमेसी।
0: विदेश मंत्री ने कहा कि भारत संघर्ष समाप्त करने में हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरेड कुशनर रूस और यूक्रेन का दौरा करेंगे। दोनों का उद्देश्य रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए शांति समझौते की कोशिश करना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अफ्रीका का वास्तविक आकार बेहतर ढंग से दिखाने वाले नए विश्व मानचित्र के पक्ष में मतदान किया है। 164 देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया जबकि अमेरिका ने इसके विरुद्ध मतदान किया। 6 देश मतदान से अलग रहे। मर्केटर मानचित्र में अफ्रीका का आकार वास्तविकता से बहुत छोटा दिखाई देता है जबकि अफ्रीका ग्रीनलैंड से लगभग 14 गुना बड़ा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।

0: मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन तक पूर्वोत्तर राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, सिक्किम, बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा की आशंका है। लखनऊ से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में भी कई जिले बाढ़ से जूझ रहे हैं।
1: राज्य में अयोध्या, वाराणसी, आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, चित्रकूट और बाराबंकी सहित 26 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। बाढ़ राहत आयुक्त के मुताबिक लगभग 3.5 लाख से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित होने के बावजूद राहत और बचाव तंत्र की सक्रियता से लगभग 72,000 बाढ़ राहत किट और 3.5 लाख से अधिक प्रभावितों को लंच पैकेट वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 17,000 से ज्यादा लोगों को बाढ़ शरणालयों सहित सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: बिहार के 14 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है।
2: आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार 8,50,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। पशुपालन विभाग के अनुसार करीब 70,000 पशु भी प्रभावित हुए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों की सुविधा के लिए 700 नावों का परिचालन किया जा रहा है। वहीं बाढ़ राहत शिविर और सामुदायिक रसोई घर भी संचालित किए जा रहे हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में गंगा और सोन नदियों के जलस्तर में कुछ कमी आने की संभावना है। हालांकि पटना में पुनपुन नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण गया पटना रेलखंड पर रेल परिचालन प्रभावित हुआ है। सविता पारीख, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व कल पूरे देश में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ा दही हांडी उत्सव आज महाराष्ट्र में धूमधाम से मनाया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
3: मुंबई और आसपास के जिलों में दही हांडी भगवान श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ा एक पारंपरिक उत्सव है। इसमें गोविंदा मानव पिरामिड बनाकर मिट्टी के हांडी फोड़ते हैं। इस उत्सव के दौरान कुछ गोविंदा कभी कभी चोटिल हो जाते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए बीएमसी ने अस्पतालों को पूरी तरह तैयार रहने और घायल गोविंदाओं को मुफ्त उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने 1,60,000 गोविंदाओं के लिए बीमा कवरेज की घोषणा की है। अस्पताल में भर्ती होने स्थायी पूर्ण या आंशिक दिव्यांगता की स्थिति में 1,00,000 से 10,00,000 रुपए तक का बीमा लाभ दिया जाएगा। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू होगा। इसमें 19 देशों के 105 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। भारत पहली बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल शाम प्रतियोगिता का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भारत आने वाले वर्षों में खेलों का प्रमुख केंद्र बनेगा।
4: 19 देशों से 108 से ज्यादा पैरा एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं उस वक्त कि अहमदाबाद, गुजरात और भारत आने वाले दिनों में खेल जगत के, चाहे वो ओलंपिक्स से जुड़े हुए खेल हो, सभी प्रकार के खेल का एक बहुत बड़ा सेंटर बनने वाला है।
0: एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच दुबई में रात 8 बजे से शुरू होगा। भारत ने थाईलैंड और हांगकांग को हराकर पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना ली है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
5: धन्यवाद मुकेश। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यूएस उपग्रह के सफल प्रक्षेपण की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने लिखा है, इसरो ने अंतरिक्ष में स्थापित किया तीसरा नेत्र। जनसत्ता की सुर्खी है, देश के पहले उपग्रह का प्रक्षेपण, इसरो की एक और कामयाबी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो और उद्योग जगत की साझेदारी को अंतरिक्ष क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया। कहा, हमारे देश के लिए गर्व का पल। दैनिक जागरण के अनुसार, प्रधानमंत्री जिस प्रोजेक्ट का करेंगे लोकार्पण, उसकी 6 महीने तक होगी निगरानी। कुछ घटनाओं से सीख लेकर NHAI ने कार्यक्रमों की SOP में जोड़े नए दिशा निर्देश। दैनिक भास्कर ने शिक्षक दिवस पर विशेष सुर्खी से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का विशेष लेख साझा करते हुए लिखा है, विजेता होते हैं शिक्षक, लेकिन शिष्य से पराजित होने की शिक्षा उन्हें महान बनाती है। पंजाब केसरी ने शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के लेख पर विकसित भारत के सफर में शिक्षकों की भूमिका देते हुए लिखा है, ये दिन सिर्फ सराहना करने के दिन से कहीं ज्यादा मायने रखता है। पंजाब केसरी की सुर्खी है, नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। मथुरा में रात 12 बजते ही हर तरफ उल्लास और हाथी घोड़ा पालकी। जय कन्हैया लाल की का उत्साह देखने

0: मिला। राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है, ब्रज में बाजे बधाई, नंद घर आई कन्हाई। नवभारत टाइम्स ने चमत्कार शीर्षक से दिया है, नेपाल में सुरंग से 9 दिन बाद 2 को जिंदा बचाया, जन्माष्टमी पर सुरक्षित निकाले गए। फोरमैन संजय शाह ने कहा, हरे कृष्ण महामंत्र जपता रहा। अमर उजाला की सुर्खी है, सुरंग में गूंजा जिंदगी का मंत्र। राजस्थान पत्रिका ने बदलेगी गैजेट की दुनिया देते हुए लिखा है, बेकार जाने वाली गर्मी से भी बनेगी काम की बिजली।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों से प्रौद्योगिकी अपनाने और नवीन शिक्षण पद्धतियों को लागू करने का आग्रह किया। 48 शिक्षकों को आज राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। सरकार ने ISO टैंक कंटेनरों में पेट्रोलियम के आयात और परिवहन के लिए 3 साल की अनुमति तथा कड़े नियमों का प्रस्ताव रखा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत संघर्ष समाप्त करने में यूक्रेन और रूस के साथ निरंतर संपर्क में है। संयुक्त राष्ट्र ने अफ्रीका का सटीक आकार दर्शाने वाले नए विश्व मानचित्र को अपनाने के पक्ष में मतदान किया। और दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी।

0: এতক্ষণ আধুনিক গান শুনলেন শ্রেয়া ঘোষালের কণ্ঠে আকাশবাণী কৈলাসহর। এখন দিল্লি কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হিন্দি এবং ইংরেজি নিউজ বুলেটিন রিলে করে শোনানো হচ্ছে। এর অব্যবহিত পরেই শুনবেন মুম্বাই কেন্দ্রের বিবিধ ভারতী অনুষ্ঠান।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षकों से अपना ज्ञान लगातार बढ़ाने, नई तकनीक अपनाने और पढ़ाने के नए तरीकों का उपयोग करने का आह्वान किया है। राष्ट्रपति ने सभी समर्पित शिक्षकों के योगदान के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे ऐसी पीढ़ियों का निर्माण कर रहे हैं जो देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति और शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि देते हुए महान शिक्षक बताया। शिक्षक दिवस हर वर्ष 5 सितंबर को डॉक्टर राधाकृष्णन की जयंती पर मनाया जाता है। राष्ट्रपति आज नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगे। ये शिक्षक 27 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और 6 केंद्रीय सरकारी संस्थानों से चुने गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। इसकी स्थापना वर्ष 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत संघर्ष समाप्त करने के लिए रूस और यूक्रेन के लगातार संपर्क में है। वार्सो में पोलैंड के विदेश मंत्री राडोस्लाव सिकोरस्की के साथ बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि युद्ध का कोई विजेता नहीं होता।
2: India believes that endless war.
3: भारत का मानना है कि अंतहीन युद्ध समाप्त होना चाहिए और युद्ध का कोई विजेता नहीं होता। हर अतिरिक्त दिन का अर्थ है अधिक मौतें, अधिक तबाही, दोनों देशों के लिए अधिक नुकसान और बाकी दुनिया के लिए अधिक लागत। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इस चिंता को सार्वजनिक रूप से व्यक्त किया था, इसलिए हमारे प्रयास बातचीत और कूटनीति को बढ़ावा देने पर केंद्रित होने चाहिए।
2: प्रमोटिंग डायलॉग एंड डिप्लोमेसी।
1: विदेश मंत्री ने कहा कि भारत संघर्ष समाप्त करने में हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की समेत शीर्ष नेताओं से भेंट की थी। दिल्ली के भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस कड़ी में ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन कल शुरू हो गया। सम्मेलन के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां और सुरक्षा प्रबंध किए जा रहे हैं। आज मोटर कारकेड का पूर्वाभ्यास किया जाएगा। दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार पूर्वाभ्यास सवेरे 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। इस दौरान भारत मंडपम और आसपास के इलाकों में 35 से अधिक सड़कों पर यातायात नियंत्रित रहेगा। सरकार ने ISO टैंक कंटेनरों में पेट्रोलियम के आयात और परिवहन के लिए 3 साल तक की अनुमति देने का प्रस्ताव किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पेट्रोलियम संशोधन नियम 2026 का मसौदा जारी किया है। इसमें आवेदन प्राप्त होने पर 7 कार्य दिवस में मंजूरी देने का प्रस्ताव है। प्रस्ताव के अनुसार पेट्रोलियम से भरे या पेट्रोलियम के लिए इस्तेमाल होने वाले ISO टैंक कंटेनर को बिना अनुमति आयात नहीं किया जा सकेगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अफ्रीका का वास्तविक आकार बेहतर ढंग से दिखाने वाले नए विश्व मानचित्र के पक्ष में मतदान किया है। 164 देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि अमरीका ने इसके विरुद्ध मतदान किया है। 6 देश मतदान से अलग रहे। मर्केटर मानचित्र में अफ्रीका का आकार वास्तविकता से बहुत छोटा दिखाई देता है।

जबकि अफ्रीका ग्रीनलैंड से लगभग 14 गुना बड़ा है। केरलम के त्रिशूल जिले में एक सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार हादसा कल रात कैंपा मंगलम के पनामबिकुन्नू में एक कार के हाईवे पर खड़े ट्रक से टकराने से हुई। कार सवार सभी युवक तमिलनाडु के विद्यार्थी थे। स्थानीय लोगों, दमकल कर्मियों और पुलिस ने युवकों को कार से निकाला। उनके शवों को त्रिशूर मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, सिक्किम, बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी अगले 2 दिन तक तेज वर्षा की आशंका है। एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच दुबई में रात 8 बजे से शुरू होगा। भारत ने थाईलैंड और हांगकांग को हराकर पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना ली है। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू होगा। इसमें 19 देशों के 105 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। भारत पहली बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। यह है प्रोग्राम म्यूजिकल दिल लगी और मैं हूं आपके साथ भावना।

0: हिट स्टोरी 3 फिल्म का गीत आपने सुना, अरमान मलिक और नीति मोहन की आवाज में थी। रश्मि विराग के बोल थे, अमाल मलिक ने इस गीत को सर्वद किया।
1: उनका सफर शुरू हुआ था

0: एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। श्रोताओ, फिल्म जगत के जाने माने निर्माता, निर्देशक, पटकथा लेखक और संपादक विधु विनोद चोपड़ा का आज जन्मदिन है। उन्हें हम जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयां देते हैं। उन्हें उनकी फिल्म परिंदा जून और 1942 अ लव स्टोरी, मिशन कश्मीर, थ्री इडियट्स, पी के संजू और मुन्ना भाई MBBS इन फिल्मों के लिए जाना जाता है और इस फिल्म की श्रृंखला, तीसरी श्रृंखला भी उन्होंने बनाई। विशेष रूप से इन फिल्मों के लिए उन्हें जाना जाता है। उनकी पहली लघु फिल्म मर्डर एट मंकी हिल काफी चर्चा में रही। लघु किसान फिल्म एन एनकाउंटर विद फेसेस जो रिलीज हुई 1976 में पहली फीचर फिल्म सजाए मौत थी। विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म मुन्ना भाई MBBS, लगे रहो मुन्ना भाई और थ्री इडियट्स, इन फिल्मों को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया और फिल्म परिंदा को फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया।

ठाकुर की आवाज थी दम लगा के हईशा। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, वरुण ग्रोवर का लिखा, अनु मलिक का संगीत था। और चित्रलोक कार्यक्रम की श्रोताओं, यही थी आखिरी पेशकश। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को, नमस्कार। रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के संग।

0: ये पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था। लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती हूँ। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम बातें कर रहे हैं शुरू

ऐसा जादूगर जिसने दुनिया के कोने कोने से दोनों को अपनी झोली में लिया और उन्हें नया रूप देकर सुरों की चाशनी में पिरोकर हमारे सामने पेश कर दिया।

सलील चौधरी का जन्म 19 नवंबर 1925 को हुआ था 24 परगना डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में, और बचपन से ही उनका लगाव संगीत

का बचपन असम के चाय बागानों में बीता और चाय बागानों की सरगम उनके जहन पर छप गई। उनके पिता संगीत के बहुत शौकीन थे और वेस्टर्न म्यूजिक से उनका जुड़ाव पिता की वजह से ही हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि चाय बागानों से लेकर आगे बंगाल के खेतों तक सलील चौधरी का जुड़ाव आम आदमी की पीड़ा से होता चला गया और वो उसकी तकलीफ से जुड़ते चले गए। ये उनके जीवन का आधार भी बनता चला गया। आपको बता दें कि सलील चौधरी ने बचपन में बांसुरी, हारमोनियम और इसराज बजाना सीखा था। इसके अलावा अपने बड़े भाई की प्रेरणा से 6 बरस की उम्र से ही उन्होंने पियानो बजाना भी सीख लिया था। सलील चौधरी ने जो अपनी पहली कंपोजिशन की थी वो आज तक मौजूद है और हम उसकी एक झलक आपको सुना रहे हैं। सन 1944 से सलील चौधरी बंगाल के किसान आंदोलन से जुड़ गए थे। अब वो नाटक और गीत लिखने लगे थे। सन 1944 में सलील चौधरी कोलकाता आ गए अपनी स्नातक की पढ़ाई करने के लिए। इस दौरान वो जुड़ गए इप्टा से। यहां उन्होंने जनगीत तैयार करने शुरू किए। ये वो गीत थे जिन्हें देवव्रत बिस्वास, हेमंत मुखर्जी, श्यामल मित्रा, संध्या मुखर्जी, मानवेंद्र मुखर्जी, सुबीर सेन और प्रतिमा बनर्जी जैसे प्रसिद्ध गायकों ने गाया था। इन्हीं में से एक गाने की झलक।

जिस पहली बांग्ला फिल्म में सलील चौधरी ने संगीत दिया था वो थी परिवर्तन। ये सन 1949 में आई थी। इसके बाद सलील चौधरी ने करीब 41 बांग्ला फिल्मों में संगीत दिया और इसके बाद प्रारब्ध उन्हें मुंबई ले आया। आकाशवाणी कोलकाता को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि किस्मत का मोड़ उन्हें मुंबई ले आया था। बड़ी ही दिलचस्प घटना है। दरअसल एक ऐसे किसान की कहानी पर स्क्रिप्ट लिख रहे थे सलील दा, जो अपनी जमीन को खो बैठता है बढ़ते हुए कर्जे की वजह से और फिर कोलकाता आ जाता है ताकि अपना गुजारा चला सके। जाने माने निर्माता निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी जब कोलकाता गए तो सलील दा ने उन्हें अपनी इस लिखी जा रही स्क्रिप्ट का प्रीमाइस सुनाया। ऋषिकेश मुखर्जी बहुत प्रभावित हो गए और उन्होंने सलाह दी कि ये कहानी तो बिमल रॉय को सुनानी चाहिए। सलील चौधरी बिमल रॉय के पास पहुंचे, लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि किसी जरूरी काम से बिमल रॉय को मुंबई जाना पड़ा था। एक हफ्ते के बाद बिमल रॉय ने सलील चौधरी को एक टेलीग्राम भेजा। इस टेलीग्राम में लिखा था, तुम अपनी इस स्क्रिप्ट पर फिल्म बनाने की तैयारियां करो। इस तरह से सन 1953 में 2 बीघा जमीन आई, जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की एक कविता और उससे प्रेरित सलील चौधरी की एक कहानी पर आधारित थी। 2 बीघा जमीन ने भारतीय सिनेमा को हमेशा के लिए बदल दिया और सलील चौधरी की जिंदगी को भी, क्योंकि अब वो मुंबई के फिल्म उद्योग से जुड़ गए थे। 2 बीघा जमीन को फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला। इसके अलावा कांस फिल्म समारोह में भी इसे पुरस्कृत किया गया। यहाँ से आगे सलील चौधरी की यात्रा कामयाबी और प्रयोगों की यात्रा है। लोक गीतों की धुनों को उन्होंने बड़ी खूबसूरती से अपने गानों में परोया है, जैसे फिल्म मधुमती का ये।

0: दरअसल इस गाने का रिदम सुने तो आपको समझ आएगा कि असम का लोक संगीत इस गाने में धड़कता है। असम के वो चाय बागान जहां सलील चौधरी का बचपन बीता था। इसी तरह से मधुमती फिल्म का ये गाना सुनिए।
1: दिल तड़प तड़प से कह रहा है आ भी जा तू हमसे आंख ना चुरा तुझे कसम है आ भी जा।
0: असल में ये गीत एक पोलिश लोकगीत पर आधारित है। जब हम इस मूल लोकगीत को सुनते हैं और उसके बाद मधुमती के इस गाने को सुनते हैं तो समझ ये आता है कि मधुमती का गीत मूल पोलिश लोकगीत से बेहतर बन पड़ा है। इसका कारण यह है कि सलील चौधरी अगर किसी धुन से प्रेरित भी होते थे तो वो उस धुन को अपने भीतर जज्ब कर लेते, उसके बाद कुछ ऐसा रचते जो अपने आप में अनमोल होता था। संगीत का जुनून इतना कमाल का था कि एक बार कोलकाता से मुंबई के सफर में सलील चौधरी अचानक बीच में गायब हो गए और कई दिनों तक गांव-गांव भटकते रहे। कारण यह था कि उन्हें काबुलीवाला फिल्म में लोक संगीत का इस्तेमाल करते हुए अपना संगीत तैयार कर

लेकिन सलील चौधरी की पकड़ केवल बांग्ला लोक संगीत पर हो ऐसा नहीं था। हम आपको एक दिलचस्प बात बताते हैं। वेस्टर्न म्यूजिक का सलील चौधरी का जुनून कुछ इस तरह था कि मुंबई के काला घोड़ा नामक इलाके में उन दिनों की एक मशहूर म्यूजिक शॉप में सलील चौधरी अक्सर नए रिकॉर्ड्स तलाश करते हुए पाए जाते और वेस्टर्न म्यूजिक का कोई नया रिकॉर्ड उन्हें नजर आता फौरन खरीद कर सुन लेते और अपने पास रख लेते। जब भी लता मंगेशकर किसी गाने की रिकॉर्डिंग या रिहर्सल के लिए सलील दा के पास पहुंचती तो वेस्टर्न म्यूजिक का एक नया तोहफा उनका इंतजार कर रहा होता था। वेस्टर्न म्यूजिक की सलील चौधरी की दीवानगी की एक मिसाल सन 1961 फिल्म छाया। महान ऑस्ट्रियन म्यूजिशियन मोजार्ट की 40वीं सिम्फनी पर आधारित ये गाना सिम्फनी की चाशनी में भीगा और सुरों की मिठास से थड़कता।

दिलचस्प बात यह है कि सलील चौधरी ने अपने फिल्मी गानों में रवींद्र संगीत का भी इस्तेमाल किया है। फोक म्यूजिक, रवींद्र संगीत, शास्त्रीय संगीत और वेस्टर्न म्यूजिक को जोड़कर सलील चौधरी ने संगीत का नया मुहावरा गढ़ा था। यहां कुछ मजेदार बातें। सलील चौधरी फिल्मों के म्यूजिक डायरेक्टर तो थे ही, लेकिन उन्होंने कई ऐसी फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक दिया जिनमें उनका संगीत नहीं था, जैसे विमल रॉय की फिल्म देवदास, यश चोपड़ा की फिल्म काला पत्थर, गुलजार की फिल्म मौसम, सुनील दत्त की फिल्म यादें वगैरह। सलील चौधरी ने कई ऐसे गाने दिए हैं जो मूल रूप से बांग्ला में कंपोज हुए थे और उनका हिंदी संस्करण सलील दा ने तैयार किया, जैसे फिल्म आनंद का ये।

सलील दा ने केवल फिल्मी गाने ही तैयार किए हों ऐसा नहीं है। जब उनकी बेटी अंतरा छोटी थी तो उन्होंने बांग्ला के नर्सरी गीत तैयार किए। अंतरा इतनी छोटी थी कि माइक्रोफोन के सामने स्टूल रखकर उस पर उनको खड़ा करना पड़ता था। ये वो बांग्ला नर्सरी सॉन्ग हैं जिन्हें गाते हुए न जाने कितनी पीढ़ियां बड़ी हुई हैं।

यहाँ हम इस बात को रेखांकित कर रहे हैं कि सलील चौधरी ने केवल फिल्मी गाने तैयार किए हों, ऐसा नहीं है। सलील चौधरी ने कई जनगीत तैयार किए और ये गीत नाट्य टोलियां और युवाओं की टोलियां आज भी गाया करती हैं, जैसे शैलेंद्र का लिखा ये बेमिसाल नगमा।

सलील चौधरी के संगीत का दायरा अपरिमित है, अपरिमित सही मायनों में है, क्योंकि एक तरफ इसमें हिंदी फिल्मी गीत हैं, दूसरी तरफ बांग्ला फिल्मी गीत हैं, लेकिन इसके अलावा गैर फिल्मी गीतों और अन्य भाषाओं के फिल्मी गीतों

का एक विराट संसार है। गैर फिल्मी गीत हिंदी में भी हैं और बांग्ला में भी। इसके अलावा मलयालम में उन्होंने एक दो नहीं बल्कि 27 फिल्मों में संगीत दिया है। जैसा कि हमने आपको बताया, बांग्ला में 41 फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया और कुल 13 भाषाओं की फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया, जिसमें हिंदी और बांग्ला और मलयालम के अलावा मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, उड़िया और असमी भाषा की फिल्में शामिल हैं। सन 1965 में आई थी फिल्म चिमीन। इस मलयालम फिल्म में सलील चौधरी ने अद्भुत संगीत दिया था। मन्ना डे के स्वर में ये मलयालम गीत सुनिए।

अब एक और दिलचस्प घटना की बारी। सन 1972 फिल्म अन्नदाता के गानों की रिकॉर्डिंग हो रही थी। सलील चौधरी ने एक गीत बनाया जिसका मुखड़ा इतना लंबा था कि क्या कहें। अब इतना बड़ा स्केल, उन्हें लगा कि कौन गायक इसे गा पाएगा। इस गाने के लिए किशोर कुमार को चुना गया। हालांकि सलील दा डर रहे थे कि किशोर इस गाने को गाएंगे, निभा पाएंगे या नहीं। किशोर कुमार ने भी इस गाने को गाने से पहले तरह तरह के नखरे किए और तरह तरह की दिक्कतें दी। उन्होंने कहा कि वो वास्तविक जीवन तो छोड़िए, सपने में भी इस गाने को नहीं गा सकते। अब सलील चौधरी संकट में फंस गए। लेकिन जब रिकॉर्डिंग स्टूडियो बुक हुआ और किशोर कुमार पहुंचे और उन्होंने इस गाने को गाना शुरू किया, तो सलील दा और वहां मौजूद सारे साजिंदे चकित रह गए। एक ही बार में ये गाना रिकॉर्ड हुआ। हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास का बड़े मुखड़े वाला ये अद्भुत गीत फिल्म

निशिता ने एक फिल्म भी निर्देशित की थी। सन 1966 में आई फिल्म पिंजरे के पंछी में मीना कुमारी, बलराज साहनी और महमूद थे। इस फिल्म की कहानी, पटकथा और निर्देशन तीनों का जिम्मा सलील चौधरी ने संभाला था। सलीलदा दुनिया भर का संगीत सुनते थे। केवल वेस्टर्न क्लासिकल नहीं बल्कि वेस्टर्न फोक से भी उनका बड़ा लगाव था। तभी तो उन्होंने जब लेव निपर की ट्यून मीडो लैंड सुनी तो इस हंगेरियन फोक ट्यून को उन्होंने हिंदी सिनेमा के एक कालजयी गाने में बदल दिया।

यहाँ एक और मजेदार बात बताएं। बचपन के दिनों में एक दरबान को गाना गाते हुए उन्होंने सुना। ये गाना उनके जहन में छप गया। आगे चलकर सन 1954 में इसी धुन को उन्होंने फिल्म नौकरी के इस गाने में बदल दिया।

पुरस्कार, सम्मान, पेशेवर काम, धन संपत्ति, इन सब चीजों से सलील चौधरी को कोई लेना देना नहीं था। वो तो अपने संगीत के मुसाफिर थे, संगीत की दुनिया का ये मुसाफिर बस काम करता रहा। उसने ये भी ध्यान नहीं दिया कि उसकी कौन सी फिल्में बड़े बैनर की हैं और कौन सी छोटी मोटी फिल्में हैं।

दुनिया के हर कोने में सलील चौधरी के संगीत को पसंद करने वाले, सराहने वाले और उनके दीवाने मौजूद हैं। अच्छा काम कभी जाया नहीं जाता। सलील चौधरी भले मुख्य धारा के बहुत ही कामयाब और धनी संगीतकार नहीं रहे, लेकिन उन्होंने असली दौलत कमाई और वो दौलत थी संगीत के सुर और उनके प्रशंसक। तभी तो सलील दा के जाने के इतने बरस बाद भी हम इतनी विकलता से उन्हें याद कर रहे हैं।

0: मुख्य फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार सलील चौधरी पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान। संपादन आकांक्षा सिंह। प्रस्तुति मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

0: के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता, आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती। गीतों भरी कहानी। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे साहित्य जगत में रश्मि रविजा के नाम से प्रसिद्ध लेखिका रश्मि वर्मा की कहानी आखिर कब तक।
1: स्नेहा घर में सबसे छोटी थी, तितली की तरह सबके आसपास मंडराती रहती, चिड़िया की तरह फुदक कर कभी घर के अंदर आती तो कभी बाहर। घर वालों की ही नहीं पड़ोसियों की भी बड़ी प्यारी थी। उसके कॉलेज से घर आते ही शर्मा चाची अक्सर कभी गरम हलवे कभी गरम पोहे की प्लेट भेज देती। जब स्नेहा पूछती, आपको कैसे पता चल जाता है मैं घर आ गई? अरे तेरे पंचम सुर के आलाप से पता चल जाता है, जितनी देर घर में तू होती है तेरे गाने की मीठी आवाज आती रहती है। कहीं मेढक भी ना आ जाए कि ये मेरी मेढकी कहाँ गा रही है। ये उससे 2 साल बड़े भाई की आवाज थी। भैया कहकर स्नेहा झपटी तो भैया के हाथों में उसकी चोटी आ गई। बोल और झपटेगी कटखनी बिल्ली कहीं की? वह उसकी चोटी थोड़ी और खींचता और वो चिल्ला पड़ती, माँ। माँ की आवाज सुनते ही भैया चोटी छोड़ किताब में आंखें गड़ा लेता। शर्मा चाची के बच्चे बड़े थे और नौकरी पर दूसरे शहर चले गए थे। उन्हें उन सब की यह शरारत बड़ी भली लगती। माँ दोनों को डांटती तो शर्मा चाची उन्हें समझाती, जाने दो शिवानी की माँ रौनक बनी रहती है, एक दिन मेरे जैसे तरसोगी कि लड़ने को ही सही बच्चे पास तो होते। स्नेहा भैया को जीप चढ़ाकर भाग जाती तो भैया फिर से किताबें फेंक उसके पीछे भागता। माँ सर पर हाथ रख लेती, ओह कोई किसी से कम नहीं। भैया हमेशा चढ़ाता खिजाता रहता पर स्नेहा को कॉलेज के लिए देर होती तो बाइक से झट कॉलेज छोड़ाता। रात में उसके साथ बैठकर उसे मैथ समझाता, अगर भैया की पेन उसके हाथों गुम हो गई तो पापा जी से शिकायत कर देता। पापा की यूं तो वो सबसे लाडली थी पर न्याय करने के लिए पापा उसे झूठ मूठ का भी डांट देते तो भैया को ही बुरा लग जाता, फिर उसके लिए चॉकलेट जरूर लेकर आता।

तो जैसे उसकी फ्रेंड फिलोसफर गाइड ही थी। बचपन से ही स्नेहा की किताबों पर कवर लगा देना, उसकी किताबों की रैक ठीक कर देना, अपने दुपट्टे से उसकी गुड़िया की सुंदर साड़ी बना देना, होमवर्क में मदद करना, उसकी शैतानियों को हमेशा छुपाना। दीदी ये सारा कुछ उसके लिए करती। सहेली से लड़ाई हो जाए तो आंसू भी दीदी ही पोंछती। बुआ जब भी यहाँ आती माँ को समझाती, सुनीता इसे भी कुछ रसोई का काम सिखाओ, कल को पराए घर जाएगी, क्या कहेंगे सब कि घर वालों ने कुछ सिखाया ही नहीं है, खानदान का नाम कटवा देगी लड़की। माँ बुआ की बात रखने को उसे किचन में भेज देती और दीदी को आवाज लगाते, शिवानी आज सारा काम गुड़िया से ही करवाना। उसका अच्छा भला नाम था स्नेहा, पर सब गुड़िया ही कहते। जब दोस्त उसे चढ़ाते तो उसे बहुत गुस्सा आता, पर घर वालों को कौन समझाए, कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की को भी कोई गुड़िया बुलाता है। वो किचन में जाती तो जरूर, पर दरवाजे की ओट में नॉवल पढ़ती रहती और दीदी भी मुस्कुराकर कुछ नहीं कहती, बल्कि माँ की आहट सुनते ही उसे आगाह कर देती और स्नेहा झूठ मूठ बर्तन उठाने रखने लगती। माँ को कुछ दाल में काला नजर आता, वो स्नेहा को अविश्वास से देखती तो स्नेहा पलट कर पूछती, क्या हुआ, तुमने कहा ना किचन में काम करने को, तो कर रही हूँ, कल मैथ्स का क्लास टेस्ट है, प्रैक्टिस करनी है, पर जाने दो, कम नंबर आए तो क्या, किचन का काम सीखना ज्यादा जरूरी है ना, आखिर खानदान की नाक का सवाल है। माँ कहती, अच्छा बाबा जा, बहुत काम कर लिया, जा तू पढ़, शिवानी तू भी जा, अब किचन मैं देखती हूँ। स्नेहा चुपके से नॉवल उठा दीदी की तरफ एक मुस्कुराहट फेंक भाग जाती। दीदी की शादी हो गई तो जैसे स्नेहा पर प्यार न्योछावर करने वाले एक और जन की बढ़ोतरी हो गई। जीजा जी की कोई छोटी बहन नहीं थी, वे अपनी छोटी बहन का सारा शौक उसके जरिए ही पूरी करते। अब कॉलेज में सहेलियां उसका नया बैग, नई सैंडल, नई ड्रेस सब हैरानी से देखती और वो इतरा कर कहती, मेरे जीजा जी लाए हैं बंबई से।

अभी एमए के फाइनल ईयर ही में थी कि बुआ एक रिश्ता ले आई। बड़े अच्छे लोग हैं, लड़का अफसर है, ज्यादा मांग नहीं उनकी, बस देखे भाले घर की लड़की चाहते हैं। मुझसे बरसों का परिचय है। मैंने गुड़िया की बात चलाई तो झट मान गए। पिताजी को लगता था अभी बहुत छोटी है, भैया उसे और आगे पढ़ने देने, किसी नौकरी के बाद ही शादी के पक्ष में था। पर बुआ पिताजी से बड़ी थी, माँ की तरह उन्हें पाला था, पिताजी की एक न चली उनके सामने। दीदी की तो शादी होते ही मानो उसके लिए यह घर पराया हो गया। यहाँ के मामलों में वह मुंह नहीं खोलती। नेहा ने जब थोड़ा डरते हुए दीदी को फोन किया, दीदी वहां सबसे बड़ी हो जाऊंगी मैं, कैसे संभालूंगी सब? संभालना क्या है, कोई छोटे बच्चे थोड़े ही हैं वे सब। अच्छा साथ रहेगा, खुश रहेगी तू। यहाँ पर मुंबई में देख, तेरे जीजा जी ऑफिस चले जाते हैं तो सारा दिन मैं अकेले पड़ी रहती हूँ, खाना तक खाने का मन नहीं होता। ज्वाइंट फैमिली में समय अच्छा कट जाता है। फिर दीदी अपने ही अकेलेपन का

घर में सिर्फ खाने कपड़े से ही मतलब था। दोनों बाप बेटे टीवी पर समाचार देखते और जैसे ही सासू जी के सीरियल देखने का वक्त होता, दोनों उठकर अपने अपने कमरे में चले जाते। वह असमंजस में पड़ जाती, पति के साथ कमरे में बैठे या सासू माँ के साथ सीरियल देखे। पति तो अपने लैपटॉप पर दफ्तर का कोई काम लिए बैठे होते। वह कमरे, ड्राइंग रूम और किचन का चक्कर लगाती रहती।

शादी से पहले इतनी खुश थी स्नेहा। हम उम्र देवर और ननद हैं, उसने सोचा था बढ़िया वक्त कटेगा। ननद की कोई बहन नहीं, वो सारा प्यार उड़ेल देगी। पर ननद कॉलेज से सीधी अपने कमरे में जाती और मोबाइल से चिपक जाती। एक आध बार स्नेहा ने कमरे में जाकर बात करने की कोशिश भी की तो ननद ने बड़े अनमने भाव से उत्तर दिया, और वो पलटकर दरवाजे तक भी नहीं पहुंची थी कि ननद पीठ फेरे किसी को फोन पर कह रही थी, अरे भाभी थी कॉलेज से आओ नहीं कि बहाने से आ जाती हैं कमरे में, इत्मीनान से फोन पर बात भी ना कर सको। स्नेहा ने ननद से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश छोड़ ही दी। उसे लगा था देवर हमेशा भाभियों के प्यारे होते।

एक दिन देवर अपने दोस्त के साथ सिनेमा देखने गए थे। सास और पति के मना करने के बावजूद वो उसका इंतजार करती रही। ड्राइंग रूम में चैनल बदलकर समय काटती रही। देवर ने अपनी चाबी से दरवाजा खोला और उसे ड्राइंग रूम में देख एक मिनट के लिए हेडफोन निकाला और पूछा, अरे भाभी नींद नहीं आ रही आपको या भैया से लड़ाई हो गई? हाँ। और फिर कान में हेडफोन लगाए गाने पर झूमते सर हिलाता अपने कमरे में चला गया। स्नेहा ने ही कमरे के दरवाजे पर जाकर पूछा, खाना गर्म करती हूँ, जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ जाइए। ओह क्या भाभी, आप कितनी ओल्ड फैशन है, मुझे खाना होगा तो माइक्रोवेव में गर्म कर लूंगा, वैसे अक्सर मैं खाना खाकर ही आता हूँ। गुड नाइट भाभी एंड थैंक्स फॉर आस्किंग, कहकर वापस हेडफोन लगा झूमना शुरू कर दिया। इस घर का रंग ढंग ही निराला था। सब एक छत के नीचे रहते थे पर सबकी दुनिया अलग थी। स्नेहा सबकी दुनिया में कदम रखने की कोशिश करती पर दरवाजा बंद पाती और फिर बंद दरवाजे से टकरा बार बार उसका मन लहूलुहान हो जाता। स्नेहा के पति को घूमने फिरने का कोई शौक नहीं था, उनका देखा जाना अपना शहर था, उन्हें कहीं भी जाने का कोई उत्साह नहीं रहता। शुरू शुरू में स्नेहा ही जिद कर बाहर जाने पर मजबूर करती। पति बड़े बेमन से गंभीर चेहरा बनाए साथ हो लेते पर हर जगह कोई ना कोई परिचित मिल जाता और फिर तो पति की मुखमुद्रा बिल्कुल बदल जाती। इतने गर्मजोशी से मिलते और बातों का वो सिलसिला शुरू होता कि स्नेहा की उपस्थिति ही भूल जाते। वो उपेक्षित सा महसूस करती। स्नेहा को गुस्सा भी आता, इन सब से कैसे इतना घुल मिलकर बातें कर रहे हैं, उससे बातें करते जुबान पर ताले पड़ जाते हैं। धीरे धीरे बाहर घूमने जाने का उसका सारा उत्साह ठंडा पड़ गया।

बस एक सहारा दीदी और सहेलियों के फोन का रहता। फोन पर बात करते वो अपने आसपास का पूरा परिवेश भूल जाती। लगता वही कॉलेज का लॉन है या फिर घर की छत। ऐसे ही एक रविवार की सुबह देर तक बातें की थी दीदी से। दीदी ने उन्हें मुंबई बुलाया था और पतिदेव ने भी हामी भर दी थी। स्नेहा का मन इतना खुश-खुश था कि बाथरूम में देर तक गुनगुनाते हुए नहाती रही। बाहर निकली तब भी गीले बालों को झटकते गाना जारी रहा। कुछ देर बाद जब लंबे बाल पीछे की तरफ फेंक सामने देखा तो पाया दरवाजे पर खड़े पति उसे गौर से देख रहे थे। एक सल्लज मुस्कान फैल गई उसके चेहरे पर। ये ध्यान भी आया यहाँ आकर तो वह गाना ही भूल गई है। पति ने पहली बार उसका गाना सुना है। शायद अभी आकर बाहों में भर लेंगे और कहेंगे कितनी मीठी आवाज है तुम्हारी, हरदम क्यों नहीं गाती। इंतजार में जैसे उसकी सांसें भी रुक गई थी पर कोई आहट नहीं हुई। नजरें उठाकर देखा तो पति अखबार उठा कुर्सी की तरफ जा रहे थे। उसे अपनी तरफ देखता पाकर बोले, इतनी जोर से गा रही हो, बगल के कमरे में ही माँ पापा हैं, कुछ तो सोचा करो। और अखबार फैला लिया सामने। स्नेहा का मन हुआ वो भी पैर पटकती हुई बाहर चली जाए पर फिर सोचा आज इतवार है और दिन बस शुरू ही हुआ है, सारा दिन अबोला रह जाएगा। किसी तरह आंसू जज्ब करते हुए स्वर को सामान्य बनाते हुए पूछा, दीदी ने बुलाया है, आपने भी हाँ कहा है, कब चलेंगे मुंबई? छुट्टी कहाँ है, इतना काम है दफ्तर में, कैसे जा सकता हूँ? अब वो हाँ तो कहना ही पड़ता है ना, बाद में कोई बहाना बना देंगे। और ये कहते हुए अखबार में डूब गए। स्नेहा जैसे आसमान से गिरी। कितनी खुश थी वह, कितनी सारी योजनाएं बना डाली, अब अपने आंसू रोकना मुश्किल हो गया। किचन में जाकर ढेर सारे प्याज काट डाले। सास ने आश्चर्य से पूछा, इतने सारे प्याज? आंखें नाक पोंछते हुए इतना ही कहा, हाँ आज सोचा आलू दो प्याजा बना दूं।

उसने तय कर लिया। अगर घर वालों की अपनी दुनिया है तो वो भी अपनी अलग दुनिया बसा लेगी और खुश रहेगी उसमें, और खाली वक्त में अखबारों के कॉलम देखने लगी, या तो नौकरी करेगी या फिर कोई बढ़िया सा कोर्स। अभी यह तलाश जारी ही थी कि उसे माँ बनने की खुशखबरी मिली। लगा अब घर का माहौल बदल जाएगा। नन्हे बेटे की किलकारी ने घर में रौनक तो ला दी, पर स्नेहा की दिनचर्या में ज्यादा बदलाव नहीं आया, बल्कि नई जिम्मेवारियां और शुमार हो गईं। बेटे को तो सब खूब खिलाते, सारा दिन घर का कोई न कोई सदस्य बेटे को गोद में उठाए फिरता, पर काम सारा स्नेहा के जिम्मे था। स्नेहा जरा इसके कपड़े बदल दो, दूध का टाइम हो गया है, दूध पिला दो, लगता है नींद आ रही है, सुला दो। वो नींद में ही उसके पास आता। कभी कभी स्नेहा को लगने लगता कहीं बड़ा होकर ये ना सोचे माँ सिर्फ काम के लिए ही होती है और बाकी सब लोग साथ खेलने को। मितभाषी पति भी बेटे के साथ खूब खेलते। एक दिन प्रैम खरीद कर ले आए, वो बहुत खुश हुई। अब प्रैम में बेटे को लेटा दोनों पति पत्नी पार्क में उसे घुमाने के लिए ले जाया करेंगे। लेकिन दूसरे दिन ही पति ने ऑफिस से आते ही जल्दी से कपड़े बदले और बोले, इसे तैयार कर दो, जरा मैं घुमा कर ले आता हूँ। वो मन महसूस कर रह गई, हाँ उसे तो किचन देखना है, वो कैसे जा सकती है। जब देवर की भी शादी तय हो गई तो सबसे ज्यादा खुशी स्नेहा को ही। अब उसे एक सहेली मिल जाएगी, वो भी तो दूसरे घर से आएगी, यहाँ के तौर तरीके से अनभिज्ञ। तय कर लिया स्नेहा ने, उसे वो कभी अकेलापन नहीं महसूस होने देगी। पर स्नेहा ने पाया देवरानी ने तो इस घर में घुलने मिलने की कोई कोशिश ही नहीं की। पहले दिन ही इतनी देर तक सोती रही कि सासू जी को उसे जगाने के लिए ननद को भेजना पड़ा, और जब देवरानी से नहा धोकर नाश्ते के लिए बाहर आने के लिए कहा गया तो उसने कह दिया, अभी तो तैयार होने में बहुत समय लगेगा, दोनों जन का नाश्ता कमरे में ही भिजवा दी जाए। ननद पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। मेरे हाथों नाश्ता भिजवाने की तो सोचना भी मत। सासू जी ने असहाय हो स्नेहा की तरफ देखा तो वो भागकर कामवाली को बुला लाई। शुक्र है स्नेहा ने उसे अतिरिक्त पैसे का वायदा कर दिन भर के लिए रोक लिया था, वरना स्नेहा को ही देवर देवरानी की सेवा में हाजिर होना पड़ता। देवरानी ने बाद में भी कभी जल्दी उठने की कोशिश नहीं की, बल्कि स्नेहा से ही कहती, आप कैसे इतनी जल्दी उठ जाती हैं, मेरी तो आंख ही नहीं खुलती। क्या बताए स्नेहा, मायके में वो भी तो देर तक सोया करती थी। देवर के ऑफिस जाने के बाद ही देवरानी नहा धोकर बाहर आती, सासू माँ को कुछ टोकने का मौका ही नहीं मिलता, और तब तक किचन का सारा काम सिमट गया होता। थोड़ी देर इधर उधर घूम फिर वो अपने कमरे में चली जाती, अपने कपड़े जेवर चूड़ियां संभालती रहती, कमरे को सजाती रहती। सास नंदे भी तारीफ करती, कितने सुंदर ढंग से सजाकर अपना कमरा रखती है। स्नेहा इशारा समझ

सकती पर कह नहीं पाती। मैं तो सारा घर ही संभालती रहती हूँ, अपने कमरे की बारी ही नहीं आती। देवरानी दिन में सो जाती और सोकर उठते ही तैयार होना शुरू कर देती। देवर ऑफिस से आ बमुश्किल चाय पीते और पत्नी श्री को लेकर घूमने निकल जाते। सास भी स्नेह से निहारते हुए कहती, एकदम राम सीता सी जोड़ी है, दोनों के ही एक से शौक। नीले घूमने फिरने का शौकीन, बहू भी वैसी ही मिली है। निशांत तो अपने भोले राम है, उसे कभी भी घूमने फिरने का शौक नहीं रहा। उनके लाड़ले के कोई शौक ना होने की वजह से स्नेहा कितनी घुटती रही, इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता।

मम्मी किसी दिन घूमने नहीं जाती और किचन में आ कभी सब्जी बना देती तो पूरे घर में शोर हो जाता। खाने के टेबल पर सासू जी इंगित करती, आज तो सब्जी छोटी बहू ने बनाई है। और हमेशा मौन रहकर खाना खाने वाले ससुर जी भी बोल पड़ते, अच्छा थोड़ी और तो बहुत बढ़िया बनी है। पतिदेव को लगता उन्हें भी हाँ में हाँ मिलानी चाहिए। वे भी स्वाद लेते हुए बोलते, सचमुच बहुत बढ़िया बनी है। देवर इस प्रशंसा पर ऐसे फूलते जैसे उनकी ही तारीफ हो रही हो। आज सिंहा बेटे को थपकते थपकते खुद भी लेट गई थी, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। शारीरिक थकान से ज्यादा मानसिक थकान थी शायद। वह अपने दिन याद कर रही थी, जब नई नई इस घर में आई थी, सबके आसपास मंडराती रहती पर कोई नोटिस भी नहीं लेता, बल्कि अक्सर उपेक्षा ही झेलनी पड़ती। और आज यही देवरानी अपने कमरे में ही बनी रहती है तो पति ससुर सब पूछ लेते हैं, अंकिता नहीं दिख रही, उसकी तबीयत तो ठीक है? स्नेहा से तो किसी ने नहीं पूछा कभी, पर उसने कभी पूछने का मौका भी तो नहीं दिया। बुखार में भी गोलियां लेकर काम में लगी रहती, क्या ये ठीक किया उसने? मायके में किसी ने उसे कभी सामने बिठाकर नहीं समझाया, पर उम्र की सीढ़ियां पार करते हुए कहानियों में, धर्म ग्रंथों में पढ़कर, फिल्मों में देखकर, अपनी दादी नानी बुआ मौसी माँ को देखकर यह एहसास अपने आप मन में घर करता गया कि लड़की को त्याग करना चाहिए, अपनी इच्छा के ऊपर दूसरों की इच्छा सर्वोपरि रखनी चाहिए, सबको खुश रखना चाहिए, सारा दुख हंसते हंसते सह जाना चाहिए, ससुराल के नियम कायदे बिना ना नुकुर के अपना लेने चाहिए। और स्नेहा ने इन सब में कुछ ज्यादा ही बहादुरी दिखाई, खुद आगे बढ़कर सारे काम अपने ऊपर ले लिए। और अब 2 साल में तो ससुर जी की दवाई, सासू जी की धूप अगरबत्ती, देवर की जीन्स, पति की तो कोई भी चीज अगर ना मिले तो सब एक ही पुकार लगाते, और वो भी दौड़ दौड़ कर सबकी जरूरतें पूरी करती रहती। पर इन सब में इसकी स्थिति इस अदृश्य हवा की तरह हो गई, जिसके बिना कोई जी नहीं सकता। सबको उसकी जरूरत है, पर हवा दिखाई नहीं देती। हवा के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं महसूस होती, उसका ख्याल रखने की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही उसकी अहमियत समझ में आती है, क्योंकि वो तो हमेशा अपने आसपास बनी हुई है। खुद को मिटाकर वह उस घर में इस तरह घुल मिल गई है कि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं बचा। आज जब अंकिता अलग थलग बनी हुई है तो सब उसका अस्तित्व महसूस तो कर रहे हैं, क्या जबकि यही रीत है? सामने झुके लोगों की ही उपेक्षा की जाती है, और अगर कोई आपकी ही उपेक्षा करने लगे तब जाकर उसका अस्तित्व महसूस होता है।

अचानक घड़ी पर जो नजर गई तो देखा 5 बज गए हैं। एकदम से हड़बड़ा कर उठ बैठी। अभी तो पानी आने वाला होगा, सब जगह उसे पानी स्टोर करना है। घर में आते ही उसने ये काम सासू जी से अपने हाथों में ले लिया था। दौड़ दौड़ कर किचन, बाथरूम सब जगह पानी भरती और ये जिम्मेवारी पूरी तरह उसी पर आ पड़ी। ननद और सासू दोनों अपने अपने कमरे में आराम करती रहती और पानी आने के समय का ख्याल स्नेहा को ही रखना पड़ता। स्नेहा सोचती, चलो सासू जी ने तो इतने वर्षों तक ये सब किया है, ननद तो छोटी है, कॉलेज से थकी हुई आई है, ये सारे काम स्नेहा को ही करने चाहिए। पर अब तो घर में देवरानी भी है, वो भी कर सकती है। और स्नेहा दोबारा लेट गई। जाने दो, आज देखती है पानी भरने कोई और उठता है या नहीं। अगर कोई पानी नहीं भरता तो होने दो थोड़ी मुश्किल, कह देगी उसकी आंख लग गई, आखिर वो भी इंसान ही है, कोई मशीन नहीं। स्नेहा ने तय कर लिया, आहान को तैयार कर पति के आने से पहले ही पार्क में ले जाएगी, कह देगी, रो रहा था, बहलाने को ले गई। जब पति को नहीं महसूस होता कि ऑफिस से आकर कुछ समय पत्नी के साथ बिताएं, तो वो ही क्यों पानी का ग्लास और चाय का कप पकड़ाने का इंतजार करती रहे। खुद से लेकर पानी पी सकते हैं, बहन, माँ, अंकिता कोई भी चाय बनाकर दे सकती है, चाहे तो बाद में पार्क में आ सकते हैं, और ना तो ना सही। अब स्नेहा को थोड़ा समय खुद के लिए भी निकालना ही होगा, वरना उसका वजूद ही मिटता जा रहा है, वो सिर्फ किसी की बेटी, बहू, माँ बनकर ही रह जाएगी। आखिर कब तक, आखिर कब तक वह दूसरों की चाकरी करती रहेगी। उसे अपने लिए जीना भी सीखना होगा। जब किसी को उसकी परवाह नहीं तो उसे ही स्वयं के लिए सोचना होगा। वो यूं अपना वजूद नहीं मिटने दे सकती। आहान थोड़ा बड़ा हो जाए फिर वो किसी स्कूल में टीचर बन जाएगी। यह फैसला करते ही उसका मन एकदम हल्का हो आया और सालों बाद भूला हुआ सा पसंदीदा गीत होठों पर आ गया। गुनगुना उठी।

आखिर कब तक। रश्मि वर्मा उर्फ रश्मि रविजा की लिखी कहानी आप सुन रहे थे। प्रस्तुति सहायक आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।

0: उत्तम सिंह,
1: मुझको हुई ना खबर,
0: एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी,
3: दिल तो पागल है दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती,
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी ना कोई संदेह,
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुर।

0: सलामे इश्क ये गीत अभी आपने सुना मुकद्दर का सिकंदर फिल्म से। आवाजें थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, अनजान की भूल। संगीत था कल्याण जी आनंद जी का।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: ये थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने। उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। अगला गीत किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में आपको सुनवा रहे हैं अभी तो जीले इस फिल्म से। इंदिवर की बोल है सपन जगमोहन का संग।

0: जगजीत सिंह की आवाज में अभी आपने सुना ये गीत फिल्म अर्थ से। कैफी आजमी का लिखा गीत था, कुलदीप सिंह का संगीत।
1: टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
2: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं।
1: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
2: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
0: सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना हम

0: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं स्वयंवर फिल्म से। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें, गुलजार के बोल, राजेश रोशन का संगीत।

0: का उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन।
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
6: नसीब इंसान का।
5: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म आशा से, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों के स्वरों में। आनंद बख्शी ने इस गीत के बोल लिखे हैं और तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों के सुरों में आशा फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे और इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब यहीं संपन्न होता है। चित्रपट संगीत का ये सफर आपने तय किया पूजा नारायणिया के साथ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में सुनेंगे आप हमारा अगला कार्यक्रम मैटिनी शो।

0: आज के मैटिनी शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित शूटिंग कोच नेहा चौहान से यूनुस खान की बातचीत।
1: विविध भारती के स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ हैं शूटिंग कोच नेहा चौहान। नेहा, बहुत बहुत स्वागत आपका।
2: थैंक यू सो मच।
1: मुझे ये बताइए कि एक रेडियो स्टेशन में आके जो पहली फीलिंग है वो क्या थी आपको?
2: आई गेस रेडियो स्टेशन के अंदर

0: ज्यादातर मुझे ऐसे लगा कि म्यूजिक मेन, सो जो हम म्यूजिक के जो अलग अलग पुराने जो डिस्क आपने हमें दिखाए, तो उसकी जो खुशबू थी जो एक ओल्ड खुशबू थी, दैट वॉज ब्यूटिफुल. आई थिंक वो खुशबू और इतनी शांति जो है ये बहुत ही, आई थिंक आई वॉज सो हैप्पी टू बी हियर.
1: अच्छा ये बताइए कि शूटिंग से नाता किस तरह से जुड़ा था आपका, और क्या आपने शूटिंग से ही शुरू किया था या किसी और खेल से शुरू किया था?
0: सो बचपन से हमने स्पोर्ट्स बहुत प्रायोरिटाइज किया था, मेरे पेरेंट्स ने, माय फादर, तो मेरे भाई और मैं हमेशा स्पोर्ट्स में थे.
1: लेकिन क्या माता पिता के साथ भी स्पोर्ट्स की परंपरा थी?
0: ऐसे तो नहीं थी, लेकिन मेरे फादर खेलते थे, उनके कॉलेज में बॉक्सिंग करते थे, वॉलीबॉल खेलते थे, तो मेरे जो चाचा है वो क्रिकेट खेलते थे. तो आई गेस हमारी फैमिली में स्पोर्ट्स, हम खाते पीते बस स्पोर्ट्स के बारे में ही बात करते रहे. तो आई गेस दैट इज हाउ हम इंट्रोड्यूस हुए स्पोर्ट्स से. तो कोई भी चीज बिना स्पोर्ट्स की हमारे यहाँ पे शुरुआत ही नहीं होती थी और एंड भी नहीं होता था. तो वैसे ही शूटिंग का जो इंट्रोडक्शन जो हुआ है वो मैं 8th क्लास में थी, और हमारे यहाँ पे हमारी स्कूल जो शैलेंद्र एजुकेशन सोसाइटी स्कूल है, तो वहाँ पे एक शूटिंग रेंज, एक मेक टू शिफ्ट शूटिंग रेंज का इंट्रोडक्शन किया गया था थ्रू NCC, नेशनल कैडेट कॉर्प्स के. तो वो एक स्कूल लेवल नेशनल कैडेट कॉर्प्स था जो हम 8th और 9th क्लास में करते थे, तो वैसे हमारे स्कूल में इंट्रोड्यूस करा था.
1: तो सबसे पहले गन तब हाथ मिली थी?
0: तब गन हाथ मिली थी. यस.
1: वो कैसी फीलिंग थी?
0: इट वॉज गुड. गन्स किसको पसंद नहीं आती है. मतलब कुछ अलग फीलिंग होती है आपको. जैसे हम जो मेले में हम शूट करते हैं गुब्बारे जो शूट करते हैं, तो आई गेस वहां से तो स्टार्ट होता ही है सबका. लेकिन वो स्कूल में वो फीलिंग बहुत अच्छी थी, और ऑनेस्टली स्पीकिंग जब मैंने पहली बार चलाए थे तो एक भी शॉट टारगेट पर नहीं लगा था. तो आई गेस यस. बट वो काफी एक अच्छा, कुछ डिफरेंट करने का जो एक फीलिंग है वो, क्योंकि हमेशा बंदूक हम देखते हैं कि यू नो आर्मी मिलिट्री एंड मूवीज में देखते थे.
1: बिल्कुल.
0: बट खुद हमें करने मिलता है, सो आई थिंक इट इज अ ग्रेट फीलिंग.
1: और किस तरह से फिर शूटिंग की दुनिया में आपके कदम स्कूल के समय में आगे बढ़ते चले गए?
0: तो स्कूल में जो इंट्रोड्यूस किया गया, तो स्कूल में आफ्टर स्कूल आवर्स शाम को प्रैक्टिस करते थे हम लोग. तब इतना कंपटीशन का ये नहीं था. सो ये मैं 98-99 की बात कर रही हूँ. तो इतना कंपटीशन का एक्सपोजर नहीं था तब. तो हमने स्कूल लेवल पे खेले काफ़ी स्कूल गेम्स वगैरह. तो उसके बाद स्कूल का जो जर्नी था वो फिर मुझे इंटरेस्ट आया कि नहीं ये कुछ अलग है और इंडिविजुअल स्पोर्ट है, तो आपको खुद के बारे में काफ़ी जानने को मिलता है. तो आई थिंक वहाँ से जो स्टार्ट हुआ, फिर रुइया कॉलेज में हमारी एक शूटिंग रेंज बन गई थी. तो वहां पे फिर मैं रुइया कॉलेज में शूटिंग करती थी. तो वैसे ही ये जर्नी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऐसा खेल खेल के नेशनल में मैं सिलेक्ट हुई थी
1: जी.
0: और वैसे ही ये जर्नी आगे बढ़ी.
1: ये जो कॉलेज के जमाने से शूटिंग करना और उसके बाद नेशनल तक चले जाना, ये सफर कितना चैलेंजिंग था? क्योंकि स्कूल और कॉलेज अलग दुनिया होती है, और नेशनल तक चले जाना, उसके बीच का सफर जो है उसमें काफी जद्दोजहद रही होगी.
0: सो मुंबई में रेंजेस इतने नहीं थे जो शूटिंग रेंजेस है. एक जो रेंज है जो महाराष्ट्र राइफल एसोसिएशन है जो वर्ली में है, तो वो एक रेंज है जहां पे शूटिंग की जाती थी. और एक चेतना कॉलेज करके है बांद्रा में, वहां पे एक ये था. तो दो तीन जगह जहां पे थी वहीं पे ये स्पोर्ट खेला जाता था, और हमारे स्कूल में उसका इंट्रोडक्शन दिया गया था. क्योंकि जो चेतना कॉलेज में जो कोचिंग कर रहे थे वो यहाँ पे भी आए थे इंट्रोड्यूस करने के लिए, स्कूल में देखने के लिए कि यहाँ पे शूटिंग करा जा सकता है क्या. तो आई गेस वो जर्नी जो थी, स्कूल तो हमारा घर से 5 मिनट ही था, तो वहां पे तो आसान था. लेकिन स्कूल से हम जब कहीं और दादर में जब रुइया कॉलेज जाना पड़ा, तो वो टाइम पे स्कूल कॉलेज मैनेज करना वो, और फिर भी अपना स्पोर्ट खेलना. आई गेस मुंबई में अगर आप दहिसर में रह रहे हो और आपको दादर जाना है, तो तब 1 आवर का जो ट्रैवल था ट्रेन में. सो मॉर्निंग हम 6 o'clock को निकलते थे, 7 o'clock के लेक्चर्स अटेंड करके, फिर दोपहर में शूटिंग का ट्रेनिंग करके, एक्सरसाइज वगैरह पूरा करके हम 9-9:30 को मैं घर आती थी
1: रात को.
0: यस रात.
1: अरे बाप रे, ये तो बहुत 15-16 घंटे का.
0: यस यस. तो वो तो जर्नी वैसी ही ट्रैवल और

0: और तो वो एक प्रकार का, और वो एनर्जी ही अलग थी, डिसिप्लिन ही अलग था, क्योंकि सब आपके साथ, बहुत सारे आपके साथ आपके कलीग्स जो थे वो भी करते थे, तो वो फन था शूटिंग, तब स्पोर्ट ये फन था। और वैसे ही शुरुआत हुई कॉलेज के, और उसी में फिर नेशनल के लिए हम क्वालिफाई कर दिए।
1: जी, मेडल्स मिलने की शुरुआत कहाँ से हुई थी?
0: मेडल्स मुझे यूनिवर्सिटी से शुरुआत हुई थी, यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप से स्टार्ट हुए थे, जहाँ पे मैंने एक फर्स्ट टाइम मैंने 400 में से 397 शूट किया था। आई
1: गजब।
0: थिंक दैट वाज अ रिकॉर्ड, यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड, तो वो तब किसी ने शूट नहीं किया था। एंड उसी के साथ स्टेट मेडल्स एंड फिर नेशनल्स में, फिर मैं नेशनल्स में मेडल्स मिलना शुरू हो गया था। तो वैसे ही थोड़े थोड़े जोड़ जोड़ के स्टेट, नेशनल्स, यूनिवर्सिटी, ऐसी शुरुआत हो गई थी।
1: क्या बात है। अच्छा, एक अच्छे कोच की क्या भूमिका होती है और आपकी जिंदगी में वो कोच कौन और कब आए?
0: कोच की भूमिका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड वो मुझे कोच बनने के बाद ज्यादा रियलाइज हुआ
1: बिल्कुल।
0: कि कितना इम्पैक्ट एक कोच का होता है। मेरे लाइफ में भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल मेरे कोच ने, मिस्टर संजय चक्रवर्ती, जो अंजलि भागवत, गगन नारंग और सुमा शिरूर, दीपाली देशपांडे, उनके कोच रह चुके थे। सो आई थिंक उन्होंने बहुत ही एक परसिस्टेंस जो होता है, डिसिप्लिन तो आई गेस हर
1: स्पोर्ट की
0: एक
1: जरूरत
0: स्पोर्ट
1: है।
0: की जरूरत है, हर एक लाइफ की जरूरत है, तो आई गेस वो तो उन्होंने सिखाया। लेकिन कंपटीशन को किस तरह आपको देखना है, एंड सिंस हमारा स्पोर्ट एक मेंटल स्पोर्ट है,
1: बिल्कुल।
0: तो उसकी जो तैयारी करनी है, वो उन्होंने, उनका इम्पैक्ट मुझ पे बहुत रहा है।
1: शूटिंग जो है वो, जैसे कि आपने कहा, एक मेंटल गेम है, तो धीरज, फोकस, ये सब कैसे मेंटेन किया जाता है? उसका रूटीन क्या होता है? जब आप खुद शूट करती थी तो अपने आप को किस तरह प्रिपेयर करती थी?
0: जब मैं शूट कर रही थी, इतना एक्सपोजर नहीं था इन बहुत सारी चीजों का, तो हमारे लिए तो कोच ने कहा इतना आपको करना है, ये ब्रीदिंग प्रैक्टिस करनी है, या ये ट्रेनिंग की प्रैक्टिस करनी है, या फिजिकल ट्रेनिंग करनी है, सो दैट वाज, एंड यही आपका काम है, उसके अलावा कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, कहीं बाहर जाना नहीं है, कहीं पार्टी पे नहीं जाना है, कोई बर्थडे पे नहीं जाना है। आई गेस वो बहुत पहले मैं स्कूल और कॉलेज से ही मुझे वो समझ में आ गया था कि आपको अगर कोई चीज करनी है तो आपको इन डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, ये हमारे कोच ने हमें बहुत पहले बता दिया था। एंड मुझे लग रहा है वही कंसंट्रेशन बना और वही चीज रिपीट, कि दिन में इतने बजे उठना है, ये आपका रूटीन है, ये करना है, कॉलेज के लेक्चर्स अटेंड करने हैं, फिर आपको 3 घंटा प्रैक्टिस करना है, फिर आपको 2 घंटा एक्सरसाइज करना है, फिर वही चीज आपको रूटीन में अगले दिन वही करना है। सो आई गेस वो चीज हमें, वो बताई गई थी हमारे कोच ने, और वही हम करते गए।
1: बिल्कुल।
0: बट आज अगर आप मुझे पूछते हैं कि फोकस की प्रैक्टिस कैसे की जाती है या कंसंट्रेशन, तो हमारे यहाँ अभी काफी स्पोर्ट्स साइंस का एक बहुत इंक्लूजन हुआ है, जहाँ पे साइकोलॉजिस्ट है, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट है, जो आपको बताते हैं कि स्पोर्ट को कैसे हैंडल करना है,
1: मेंटल तैयारी क्या,
0: मेंटल तैयारी क्या करनी है, आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, क्या खाना है ताकि आपका फोकस अच्छा रहे, जल्दी सोना है। हम तो पहले, मतलब हम थक जाते थे और सो जाते थे, तो इतना एक्सपोजर नहीं था मोबाइल फोन का, तो कंसंट्रेशन अपने आप, वो 3 घंटे में अपने आप हम फोकस हो जाते थे।
1: बिल्कुल। अच्छा, बतौर शूटर जो आपका करियर था वो किस तरह चला और वो कौन से हालात थे जिन्होंने आपको कोच बना दिया?
0: सो आई गेस एज अ शूटर, तो सबसे पहला तो हमने जो स्टार्ट किया है वो एक स्पोर्ट के दौर पे, एक यू नो फिजिकल स्पोर्ट है, तो आपको आपका फिजिकल हेल्थ अच्छा रखना है, तो वो ही एक गोल था। उसके बाद जब 2-4 साल के बाद जब मेडल्स मिलने लगे, देन आप थोड़े से ड्रीम करने लगते हैं कि ओके अभी इसके बाद क्या है, तो आप आपके आजू बाजू में जो इंस्पिरेशन है आप देखते हैं, तो आई गेस वो देख के तो सबसे पहला मेन कि ओलंपिक्स में जाना है या इंटरनेशनल में जाना है, तो वो गोल कॉलेज के टाइम हमने काफी वो सोचने लगे थे हम उस बारे में। एंड उसके बाद आई डोंट थिंक कि शूटर के बाद मैंने कभी एज अ शूटर सोचा था कि मैं कोच बनूंगी।
1: अच्छा।

0: आइडियली मैंने रुइया कॉलेज से मतलब इकोनॉमिक ऑनर्स किया था एंड देन फिर मैंने एमबीए किया था.
1: एमबीए करने की क्या वजह?
0: Yes. नहीं, एक साइड में बैकअप प्लान, बिकॉज स्पोर्ट के साथ एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया एजुकेशन ने. मुझे ऐसा लगता है कि उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए स्पोर्ट को आपको बहुत जरूरी है एजुकेशन के ऊपर भी ध्यान देना, क्योंकि वो एक बैलेंस देता है आपको. तो मैं हमेशा चाहती थी कि कुछ भी हो जाए मैं स्पोर्ट करूंगी लेकिन मैं एजुकेशन को बैलेंस रखूंगी. तो आई गेस जब 2013 के अराउंड काफी मैंने आई थिंक 12-15 साल शूटिंग करने के बाद आई वॉज नॉट सो हैप्पी विद द वे शूटिंग हो रहा था. तो मैंने सोचा कि नहीं, अभी एक थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, क्योंकि शूटिंग जो स्पोर्ट है हमारा वो उसका कोई एज लिमिट नहीं है. तो आपको मतलब आप 50-60 तक आप शूटिंग कर सकते हैं. तो उसका सिंस एज लिमिट नहीं है तो आप उसको छोड़ने का मौका आता नहीं है आप में, क्योंकि फिजिकल स्पोर्ट में तो आप इंजर्ड होते हैं या यू नो
1: कोई लिमिट आती है.
0: तो शूटिंग स्पोर्ट में वो लिमिट नहीं है. तो जब 2013 में मैंने सोचा कि नहीं, अभी ये बैकअप तो है हमारे पास, तो लेट्स आप शूटिंग की जगह थोड़ा सा कॉर्पोरेट में देखते हैं कि क्या है. तो मैंने 5-6 मंथ्स मैं एक एचआर की ऑर्गेनाइजेशन में थी मैं, बट मैं बिल्कुल खुश नहीं थी वहां पे, बिकॉज इतनी पूरी जिंदगी आपकी स्पोर्ट में गई, आपके बहुत इंपॉर्टेंट डेज ऑफ योर करियर और लाइफ के जब स्पोर्ट में जाते हैं तो आप बहुत लॉस्ट फील करते हैं अचानक एक ऑफिस में कंस्ट्रेंट होके. फिर 2014 में एक जो गन फॉर ग्लोरी शूटिंग एकेडमी है, गगन नारंग स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन, जो गगन नारंग जी है जो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, तो उन्होंने एकेडमी कुछ 15 साल पहले ओपन की थी अराउंड 2011-12 में. और हमने गुजरात में ग्रास रूट लेवल प्रोग्राम शुरू करना था. तो उन्होंने मुझे ऐसे ही पहुंचा, क्योंकि हम लोग सब साथ में शूटिंग करते थे, तो उन्होंने कहा कि कोई कोच हो तो आप बताइए. तो मैंने फिर बोला कि ठीक है, मैं देख के बताती हूँ कि कोई कोच होगा जो वहां पे इंटरेस्ट रखेगा जाने के लिए. तो ऐसा तो कुछ नहीं, फिर मैंने सोचा, फिर मैंने घर पे बात किया, मतलब कि क्या मैं जा सकती हूँ क्या गुजरात और एक्सप्लोर कर सकती हूँ ये क्या है. तो जॉब अच्छी थी मेरी, आई वॉज डूइंग गुड. घर वालों ने मुझे कहा, मेरे फादर ने कहा मुझे कि देखो तुमने इतने साल तुम्हारा पैशन खुद एक्सपीरियंस किया है, तुमको जाना है, तुम देखो जाके. तो ऐसे ही अहमदाबाद में एक स्कूल संस्कार धाम है, वहां पे हमारा ये टैलेंट एंड प्रोग्राम था गन फॉर ग्लोरी का. तो हम वहां पे गए वो स्कूल में, तो वो वहां के गुजरात के गांव-गांव से बच्चे आए थे काफी 12-13 साल के. तो वो ऐसे वो एक प्रोग्राम एक था गवर्नमेंट का, तो वो प्रोग्राम हम एक्सप्लोर कर रहे थे और वहां से हम टैलेंट लेके हम ट्रेन करने. तो मुझे कोचिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कोच बनूंगी कभी. तो वैसे कोचिंग का जर्नी मेरा शुरू हुआ.
1: गजब. और आज ये स्थिति है कि बहुत स्टार खिलाड़ी जो हैं वो आपकी निगरानी में तैयारी कर रहे हैं, तो उन खिलाड़ियों के बारे में बताएं जिन्होंने बहुत नाम कमाया और इस वक्त आपके साथ सीख रहे हैं.
0: सो गुजरात से जो खिलाड़ी हमारी बनी थी वो है इलेवन इलवालर इवन, जो एक अर्जुन अवार्डी है, 2 बार ओलंपिक खेल चुके हैं.
1: वो गुजरात में ही मिली आपको?
0: यस, जो प्रोग्राम हम रन कर रहे थे तो वो वहां पे उस प्रोग्राम के अंडर आए थे.
1: किसी गाँव से आई थी?
0: नहीं, वो शी वॉज फ्रॉम सिटी, वो गुजरात से ही थे. तो हमारे 2-3 प्रोग्राम्स थे, उनको वो जोड़ के हम वो प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे थे. तो वो टैलेंट सर्च से वो आए थे, तो वहां से उनकी शुरुआत हुई एंड आज भी हम साथ में है. शी इज एन अर्जुन अवार्डी, वर्ल्ड नंबर 1. सो आई गेस वहां से उनकी शुरुआत हुई थी, उनकी जर्नी की भी. और अभी जो धनुष श्रीकांत है, जो 2 बार डेफ ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, सो आई गेस वो 2 एथलीट्स ऐसे थे जहां से उनकी मतलब शुरुआत हुई थी. धनुष है तेलंगाना से, हैदराबाद से है. तो बट ये सारे हमारे गन फॉर ग्लोरी एकेडमी का हिस्सा है, आज भी है. और बहुत सारे ऐसे एथलीट्स है, उमा महेश करके है, रमिता जिंडाल जो हरियाणा से है, जो पेरिस ओलंपिक्स में 2024 में शी वॉज इन टॉप 8. तो वो भी हमारे साथ है, हमारी एथलीट है. तो ऐसे बहुत सारे एथलीट्स के साथ काम करने का मौका मिला.
1: ये जो आपके प्रिय 2 टॉप एथलीट हैं, इनको आप कितने साल से सिखा रही हैं?
0: तो इलावेनिल को

0: मैं सिखा रही हूँ पास्ट मोर देन 12 इयर्स से, और धनुष को भी 10 साल से वो मेरे साथ में है
1: जी।
0: और काफी दूसरे एथलीट्स भी जो है वो भी आज 8-8, 10-10 साल से साथ में है।
1: तो आपका ये जो तकरीबन एक डेकेड से ज्यादा का कोचिंग का ये सफर है, जाहिर है पहले तो कोई ट्रेनिंग नहीं थी कोचिंग करने की, कोच बनने की, ये सेल्फ लर्न मामला रहा है सारा, आपने खुद को ऑर्गेनिकली डेवलप किया बतौर एक कोच?
0: सो स्टार्टिंग में ऑफ कोर्स बहुत लोगों के गाइडेंस मिले, जैसे गगन नारंग जी जो ओलंपिक मेडलिस्ट थे, तो उन्होंने काफी कोचेस को देखा हुआ था, पूरे वर्ल्ड में देखा हुआ था। मैं खुद मैंने काफी कोचेस के साथ मैंने ट्रेनिंग करी हुई है, तो बहुत लोगों के स्टाइल्स हमें पता थे, तो वैसे वो जर्नी गाइडेंस के थ्रू स्टार्ट हुई। लेकिन बहुत बड़ा मौका मुझे 2017 में हमारा जो सबसे बड़ा चेंज आया कोचिंग का, क्योंकि इतना कोचेस को सिखाने का इंडिया में आई थिंक बहुत सारे कम कोर्सेस थे, बट कोचिंग कैसे करते हैं वो कोर्सेस नहीं थे। तो 2017 में हमारी एकेडमी ने एक प्रोजेक्ट लीप करके एक प्रोग्राम था, और उसके साथ ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट करके जो है उन्होंने कोचेस एक्सेलेंस प्रोग्राम शुरू किया था। तो उस कोचेस एक्सेलेंस प्रोग्राम के अंडर शूटिंग और बैडमिंटन थे, और कोचिंग कैसे करते हैं, आपको कोचिंग एथलीट को कैसे करनी है, वो कोर्सेस शुरू हो गए थे। वो उस पर्टिकुलर जो कोचेस एक्सेलेंस प्रोग्राम का मेरे पे बहुत बहुत मुझ पर इम्पैक्ट रहा है, और उसमें लाइफ लेसन्स को कोच ने कैसे एथलीट को बनाना है, वहां से शुरुआत हुई।
1: अच्छा, जिस जमाने में आप खेलती थी तब टेक्नोलॉजी का उतना असर नहीं था, आज हर खेल में टेक्नोलॉजी का दखल बहुत बढ़ गया है, तो कितना हेल्प करती है आज टेक्नोलॉजी बतौर कोच आप जब सिखाती हैं शूटर्स को?
0: सो टेक्नोलॉजी हमारे इसमें टेक्निक, ये किसी भी एथलीट को, टॉप एथलीट शायद बिकॉज वो बाहर खेलने जाते थे तो वो एक दूसरे को देख के बाहर के कंट्रीज में देख के सीख लेते थे, तो वही टेक्निक्स जो आती थी वो इंडिया में वो लेके आते थे, और हम पे हम शेयर, नॉलेज शेयरिंग जो बोलते हैं वो शेयर किया जाता था। तो टेक्नोलॉजी एज सच तो कुछ भी नहीं था। अभी जो फास्ट फॉरवर्ड, आप 10-15 साल फास्ट फॉरवर्ड मैं बोल सकती हूँ कि काफी इक्विपमेंट ओरिएंटेड हमारा गेम हो चुका है, सो काफी एप्लीकेशंस और काफी टेक्निकल चीजें आई हुई है, टूल्स आए हुए हैं जो आपको मॉनिटर कर सकते हैं, आपका स्पोर्ट मॉनिटर कर सकते हैं।
1: अच्छा, मुझे ये बताएं कि भारत पूरी दुनिया में शूटिंग के मामले में कहां पड़ता है और क्या भविष्य है हमारा?
0: भारत आई थिंक आप अगर देखोगे तो शूटिंग के जो ओलंपिक मेडल्स है वो बहुत ही ज्यादा है। आज हम 2004 से देख रहे हैं तो ओलंपिक मेडल्स में हमने बहुत
1: लगातार
0: मेडल्स है, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स में, हम वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमने बहुत ही प्रोग्रेस किया हुआ है। तो आई गेस शूटिंग इज नंबर वन स्पोर्ट राइट नाउ इन इंडिया, और हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, क्योंकि जो एथलीट्स बहुत, जिन्होंने वर्ल्ड में बहुत अच्छा किया हुआ है, उन्होंने अपने अपने एकेडमीज ओपन किए और उतना गाइडेंस बढ़ गया, एक्सपोजर बढ़ गया है। सो आई गेस शूटिंग इज वन ऑफ द नंबर वन स्पोर्ट इन इंडिया।
1: आपके स्कूल में एक छोटी सी शूटिंग रेंज शुरू होती है और आप जुड़ जाती हैं। गुजरात में एक ग्रास रूट प्रोग्राम होता है और आपको कुछ ऐसे एथलीट मिलते हैं जो आगे चल के नाम कमाते हैं। ये जो ग्रास रूट प्रोग्राम्स होते हैं कितना मायने रखते हैं, और आज देश के कोने कोने में शूटिंग की संभावनाएं खोजने के लिए आप लोग क्या करें?
0: सो बहुत काफी स्कूल्स में ये टैलेंट सर्च प्रोग्राम्स हो रहे हैं, एटलीस्ट मैं एक एकेडमी के पर्सपेक्टिव से बोल सकती हूँ कि काफी हमारे 20 एकेडमीज है आज, 20 ब्रांचेस है पूरे कंट्री में जहाँ पे हमारे ग्रास रूट लेवल प्रोग्राम्स बनते हैं, और वहाँ पे हमारी टीम जो है वो सर्च करती है, अलग अलग साइंटिफिक मेथड्स यूज करती है टू सी कि शूटिंग स्पोर्ट के लिए कौन सा स्टूडेंट, एक कोई रॉ स्टूडेंट है
1: जो
0: संभावना है कि जो टैलेंटेड है, और कुछ हमने काफी साइंटिफिक मेथड्स फिगर आउट किए हैं जो एक शूटिंग एथलीट, मतलब जो शूटर है वो बनने के लिए चाहिए, कुछ स्किल्स है, तो वो स्किल्स हम ढूंढते हैं काफी स्कूल्स में, भुवनेश्वर है, पुणे है, आज गुजरात का बहुत बड़ा प्रोग्राम है, जबलपुर है, चेन्नई है, ये काफी सारे जगह

0: हमने ये टैलेंट सर्च किए हुए हैं और आज बहुत जगह पे जो खेलो इंडिया का जो प्रोग्राम है जो मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया है, सो दैट इज ऑल्सो एक ग्रास रूट लेवल प्रोग्राम ही है जहां से कहां कहां से बच्चे आते हैं और अपना सेंटर्स में हमारे वो ट्रेनिंग करते हैं और वो एज अ एथलीट डेवलप होता है।
1: अच्छा, जब आप शूटिंग नहीं कर रही होती हैं, फुर्सत के पल होते हैं, तो वो क्या करते हुए बीतते हैं?
0: कोचिंग नहीं करती हूँ क्योंकि पूरा दिन हम कोचिंग करते हैं, जब नहीं करती हूँ तभी भी नेक्स्ट डे के बारे में सोचती हूँ तो काफी प्रॉब्लम सॉल्विंग ब्रेन चलता रहता है कि ओके ये आज ये नेक्स्ट डे ये एथलीट करना है। लेकिन मैं आई लाइक रीडिंग, रीडिंग बहुत अच्छा, मुझे ट्रैवलिंग अच्छा लगता है, तो आई गेस ये बहुत सारी दो तीन चीज है जो मैं कोशिश करती हूँ कि करूँ।
1: एक कोच के तौर पर ये जो उतार चढ़ाव है खिलाड़ियों के जीवन के, उनकी प्रोग्रेस के, कई बार नाकामी होती है, कई बार बड़ी कामयाबियां होती हैं, कई बार एक कामयाबी के बाद दूसरी कामयाबी के बीच की डिस्टेंस बहुत लंबी होती है, खुद को और खिलाड़ियों को संभालना कितना मुश्किल होता है?
0: ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि एथलीट्स इतनी मेहनत करते हैं और आप सारे एथलीट्स हर बार आप मेडल नहीं जीत सकते हैं या हर बार आप वही सेम ऊंचाइयां नहीं आप देख सकते हैं, तो हमारी बहुत अच्छी टीम होती है, बहुत लोग जुड़े होते हैं एक एथलीट के, कोच तो एक बोलते हैं कैप्टन है लेकिन वो शिप को बनाने में बहुत सारे लोगों का इम्पोर्टेंस है, तो हम ये टीम आई गेस एक अच्छा एनवायरनमेंट एथलीट को देते हैं और हम संभाल लेते हैं। मुझे ऐसे लगता है इतना डिफिकल्ट नहीं है लेकिन हम संभाल लेते हैं उस एथलीट को, उसकी जो जो जरूरत है वो टाइम पे वो उसको देखना, उसको समझना एंड फिर उसको वो काइंड ऑफ सपोर्ट देना, अगर आप वो कर सकते हैं तो वो अब मुश्किल नहीं है इतना।
1: आपके सिखाए हुए बच्चों को अर्जुन अवार्ड मिला है, कितना गर्व होता है?
0: बहुत ही, इट्स प्राइड, रिकग्निशन इम्पोर्टेंट है उनके काम के लिए, इन स्पोर्ट्स काफी जरूरी होता है क्योंकि मेडल्स तो है ही लेकिन अवार्ड्स ये पार्ट ऑफ योर जर्नी है एंड लेकिन एक नेशनल अवार्ड मिलना एथलीट को और वो भी सबके सामने रिकग्नाइज होना पूरे, बिकॉज आप वो मिलियंस ऑफ पीपल आर वॉचिंग यू, तो मुझे लग रहा है कि इट्स अ प्राइड।
1: अच्छा, एक और बड़ा मकाम आपकी अपनी जर्नी में आया है जब अभी अभी आपको द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है, अभी अवार्ड मिलना बाकी है, ये खबर जब आपको मिली तो क्या फीलिंग थी, क्या कैफियत थी?
0: फीलिंग तो मैं अभी भी सोच रही हूँ कि जितना काम हम करते हैं और इतने साल से जो काम किया है एंड उसका जब एक रिकग्निशन आपके एथलीट्स बनाने का आपको मिल रहा है, आई गेस एक अच्छा फीलिंग है, बहुत ही हम्बल फीलिंग है और ऑनर फील होता है कि आपको रिकग्नाइज किया गया है, सो आई गेस इट्स अ गुड फीलिंग।
1: अच्छा, मुझे ये बताइए कि बहुत बड़ी कॉम्पिटिशन्स के अवार्ड अब और कितनी दूर हैं, आने वाले सालों में किन किन मुकाबलों में अवार्ड्स की उम्मीद है?
0: सो अभी एशियन गेम्स है, सितंबर से एशियन गेम्स है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट है जो चार साल में एक बार आता है एंड इट इज मच लुक्ड आफ्टर क्योंकि बहुत सारे स्पोर्ट्स है और एशिया के टॉप, एशिया की जो कंट्रीज है और उसके टॉप एथलीट्स है वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो बहुत ही प्रेस्टीजियस इवेंट है एशियन गेम्स। उसके बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप है जो 2028 में लॉस एंजलिस में ओलंपिक्स है, उसका जो कोटा इवेंट होता है वहां से शुरुआत होगी,
1: बिल्कुल,
0: तो काफी दो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं।
1: बिल्कुल, बहुत सारी शुभकामनाएं और विविध भारती के स्टूडियो में आ पाई और अपनी पूरी जर्नी के बारे में आपने बताया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चलने से पहले अपनी पसंद का एक गाना जरूर बताइए जो हम अपने श्रोताओं को डेडिकेट करेंगे।
0: वैसे तो बहुत गाने हैं लेकिन एक बहुत ही फेवरेट सॉन्ग जो है वो है जब कोई बात बिगड़ जाए।
1: क्या बात है, जुर्म फिल्म का ये गाना सुनते हैं। आप स्टूडियो में आई, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू सो मच। थैंक यू,
1: शुक्रिया।

0: वेटनी शो में अभी आप सुन रहे थे द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित शूटिंग कोच नेहा चौहान से यूनुस खान की ये बातचीत। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग रीमा जोशी का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंज वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजे का समय होने जा रहा है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

नंदिनी, नंदिनी, नंदिनी, समीर चाह रहा है। पापा नहीं माने, वो मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं। इतनी इजाजत दी है कि तुम उसे जाते वक्त सिर्फ एक नजर देख सको। उठो नंदिनी, उठो। समीर हमेशा के लिए जा रहा है। जाकर देखा उसे, फिर शायद जिंदगी में तुम उसे कभी नहीं देख पाओगी। जाओ नंदिनी।

0: तकनीकी सहयोग दिया अशोक कुमार मिश्रा और बाबूलाल मीणा ने, हमारे ओबी इंचार्ज थे वीके तोमर और प्रस्तुतकर्ता प्रमोद कुमार। मैं शोएसआर खान अपने साथी कमेंटेटर कौशिक राय के साथ आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लिए चलता हूं। नमस्कार।
1: अभी आपने दिल्ली के विज्ञान भवन से भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित किए राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार समारोह का सजीव विवरण सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे शोएसआर खान हिंदी में और कौशिक रॉय अंग्रेजी में।
2: You were listening to a live broadcast of the presentation ceremony of the National Award to Teachers organized by the Ministry of Education, Government of India, in the gracious presence of Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, at Vigyan Bhavan, New Delhi. Our commentators were Shoaesyar Khan in Hindi and Kaushik Roy in English.
3: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर

0: राजनीतिक संघर्षों और बढ़ते आर्थिक दबावों का सामना कर रही है। होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यवधान के कारण खाद्य और ईंधन की बढ़ती कीमतें भी चिंता का विषय बनी हुई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के बाढ़ प्रभावित त्रिशूली बाजार क्षेत्र से 5 वर्षीय बच्चे सहित 3 और भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। इससे शरणार्थियों की कुल संख्या 169 हो गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 275 भारतीय नागरिक अभी भी लापता हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि 1907 भारतीय चीन से सुरक्षित नेपाल पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास भारतीय शरणार्थियों को हवाई मार्ग से वापस लाने में मदद कर रहा है। इस बीच नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1344 हो गई है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, सिक्किम, बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी अगले 2 दिन तक तेज बारिश की आशंका है। एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच दुबई में रात 8 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: হিন্দি সংবাদ দিল্লি কেন্দ্র থেকে সম্প্রচারিত হল। আকাশবাণী কৈলাসহর। ছায়াগীতি বাংলা ছবির গানের অনুষ্ঠান আজ শোনাব শিল্পী শ্যামল মিত্রর গাওয়া গান বিভিন্ন ছবি থেকে। প্রথম ছবি খেয়া।

0: अनुपात दरभंगा केंद्र है। कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से हमारे अगले कार्यक्रम के लिए
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 600 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: beyond textbooks while shaping lives of students. Also calls for less screen time, more sports and outdoor activities for children. Prime Minister to address centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce
1: 2026 in New Delhi on the occasion of Teachers Day. The President said that a society that respects teachers is a progressive society in right terms.
2: हम सब देशवासी विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था के बल पर ही विकसित भारत का निर्माण संभव है। हमारे शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में प्राणवायु का संचार करते हैं। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हमारे देश में एक भी विद्यार्थी अच्छी शिक्षा के अवसर से वंचित ना हो।
1: President Murmu added that academic excellence

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के जरिए ही विकसित भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि जो समाज अपने शिक्षकों का सम्मान करता है वो सही मायनों में प्रगतिशील समाज होता है।
1: हम सब देशवासी विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था के बल पर ही विकसित भारत का निर्माण संभव है। हमारे शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में प्राणवायु का संचार करते हैं। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हमारे देश में एक भी विद्यार्थी अच्छी शिक्षा के अवसर से वंचित ना हो।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने महिला अधिकारों और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए सावित्रीबाई फुले के योगदान को भी याद किया। इस अवसर पर 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से चुने गए 48 स्कूल शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने उच्च शिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने और उनके बचपन को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में इस मुलाकात की झलकियां साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि शिक्षकों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हर विद्यार्थी के भीतर का बचपन जीवंत रहे। इसके लिए शिक्षकों को अपने भीतर के बच्चे को भी जीवित रखना होगा। श्री मोदी ने बच्चों में अत्यधिक स्क्रीन समय की आदत पर चिंता जताई।
2: एक विषय है स्क्रीन टाइम, अब ये एक प्रकार का एडिक्शन है। मेरे मन में एक विचार आता है, या तो वो बच्चा खेल कूद के अंदर बहुत रुचि लेने लग जाएगा। खेल कूद मतलब वो वीडियो गेम नहीं, मैंने एक्चुअली मैदान में वो खेलना, तो धीरे धीरे वो उसमें से बाहर आ सकते। और ऐसे में क्रिएटिविटी की तरफ हम बच्चों को जितना ज्यादा जोड़ेंगे, और हमने ऐसे कुछ न कुछ कार्यक्रमों को आदत बनानी चाहिए।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम

0: कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का यह कॉलेज देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। इसकी स्थापना वर्ष 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। बिहार में गंगा, गंडक और कोसी नदी में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बाढ़ से 16 जिले प्रभावित हैं, जबकि पटना सहित 14 जिलों में हालात गंभीर बने हुए हैं। एक रिपोर्ट।
1: बिहार में गंगा, गंडक, कोसी समेत प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। 16 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार पटना में गंगा नदी खतरे के निशान से लगभग 2 मीटर ऊपर बह रही है। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि इसके गांधी घाट गेज स्थल पर नया उच्च जलस्तर सृजित होने की आशंका है। विभाग ने संबंधित जिलों को आपदा के मद्देनजर सभी जरूरी एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के बाढ़ प्रभावित त्रिशूली बाजार क्षेत्र से 5 वर्षीय बच्चे सहित 3 और भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। इससे शरणार्थियों की कुल संख्या 169 हो गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। प्रवक्ता ने कहा कि आने वाले दिनों में भारत नेपाल सरकार के अनुरोध पर अधिक फॉरेंसिक किट, बेलीब्रिज और अतिरिक्त सामग्री भेजने की योजना बना रहा है। बेलीब्रिज पूर्व निर्मित और मॉड्यूलर स्टील पुल होता है, जिसे कम समय में और बिना भारी मशीनों के आसानी से जोड़ा या स्थापित किया जा सकता है। इस बीच नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1344 हो गई है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में उत्तर पूर्वी राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, सिक्किम, बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टेन वी क्योंग से होगा। एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच दुबई में भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। President Draupadi Murmu today said that Viksit Bharat will only be possible with quality education, addressing the National Teachers Award Ceremony 2026 in New Delhi. On the occasion of Teachers Day, the President said that a society that respects their teachers is a progressive society in right terms.
3: हम सब देशवासी विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था के बल पर ही विकसित भारत का निर्माण संभव है। हमारे शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में प्राणवायु का संचार करते हैं। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हमारे देश में एक भी विद्यार्थी अच्छी शिक्षा के अवसर से वंचित ना हो।
2: President Murmu today conferred the National Teachers Awards. 48 selected school teachers from 27 states, 7 union territories and 6 organizations of the central government received the awards. The President also presented national awards to 21 teachers and faculties of higher education institutions and polytechnics. Prime Minister Narendra Modi has called upon teachers to go beyond textbooks and play a greater role in preserving childhood while shaping the lives of students. He made these remarks while interacting with the National Teachers Day Award winners in New Delhi yesterday. While sharing the glimpses of the interaction with teachers in a social media post, the Prime Minister emphasized that teachers must ensure that the child within every student remains alive, and for that, they should also preserve the child within themselves. Highlighting key health and social issues, Mr. Modi expressed concern over excessive screen time among children and suggested encouraging sports, outdoor activities and creative pursuits as effective ways to reduce screen addiction.
4: एक विषय है स्क्रीन टाइम। अब ये एक प्रकार का एडिक्शन है। मेरे मन में एक विचार आता है, या तो वो बच्चा खेल कूद

कार्यक्रम का आखिरी गीत अब आपको सुनवाएंगे हम। पत्र लिखा है प्रकाश दादा जैन, सूरज संगीता जैन और पी आर जैन ने, साथ ही सोनाली पथिक, कृष्ण आशा नारंग और सुरेश नारंग ने, और ग्राम सालिया खेड़ी आमर मालवा आगर मालवा मध्य प्रदेश से सोनू विश्वकर्मा और मोनू विश्वकर्मा ने, मैसवाड़ी मलकापुर से शत्रुघ्न धाड़े, वाल्मीक नीना जी, स्वप्निल और अजय स्वप्निल धाड़े और अजय खिरोड़कर ने ये गीत सुनना चाहते हैं। प्यार किए जा फिल्म का लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में, राजेंद्र कृष्ण के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: महेंद्र और मेरी सभा रोज ही जमने लगी, लेकिन घर के कामकाज में मैंने किसी प्रकार की शिथिलता नहीं आने दी। रसोई पानी, कामकाज, माँ की सेवा सब करने के बाद ही मैं आमोद प्रमोद में सम्मिलित होती थी। मुझे इतना काम करते देख महेंद्र कहता,
1: दास दासियों से काम न लेकर तुम उन्हें मिट्टी कर दोगे।
0: अरे काम न करके स्वयं मिट्टी होने से तो अच्छा ही है। जाओ तुम कॉलेज जाओ।
1: लेकिन आज इस मौसम में?
0: नहीं नहीं ये नहीं होगा, गाड़ी तैयार है, कॉलेज जाना ही पड़ेगा।
1: सच विनोद, तुमने आकर इस घर की काया ही पलट कर दी, घर का नक्शा ही बदल गया। कपड़े यथास्थान पर तैयार, हर जगह तुम्हारी सेवा का अनुभव करता हूँ। आशा को तो किसी काम का शऊर ही नहीं।
0: अरे हाँ, बिहारी बाबू बहुत दिनों से नहीं आए।
1: हाँ मैं तो भूल ही गया था, बिहारी ने मुझे लिखकर सूचित किया था कि रविवार को माँ के हाथ का भोजन करेगा, लेकिन मैंने उत्तर लिख दिया कि रविवार को मुझे विशेष कार्य से बाहर जाना है।
0: तुमने ऐसा क्यों लिखा?
1: अरे उसके आने पर अपना रविवार मिट्टी हो जाता।
2: अरे महिंदा, शंभू से मालूम हुआ कि तुम बाहर नहीं गए, घर में ही हो।
1: हाँ वो तबीयत ठीक नहीं इसलिए बाहर नहीं जा सका, वो सर में बहुत दर्द है। बैठो बिहारी।
0: तुम बहुत देर से बैठे हो, लाओ सर में बाम लगा देती हूँ।
1: नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है।
0: अरे लेटो भी, मैं लगा देती हूँ। लेटो भी, लेटो।
1: अच्छा
0: कुछ आराम मिल रहा है?
2: हाँ। अरे विनोद भाभी, ऐसी सेवा टहल होने पर तो रोग घटेगा नहीं, बढ़ जाएगा।
0: हम मूर्ख स्त्री ऐसे क्या जाने, आप लोगों के डॉक्टरी शास्त्र में कदाचित ऐसा ही लिखा होगा।
2: ठीक तो है, अरे ये सेवा देखकर तो मेरे सर में भी दर्द हो रहा है, किंतु मेरे जैसे अभागे कपाल को बिना चिकित्सा के ही चटपट ठीक हो जाना पड़ता है। महेंद्र भैया के सिर में जोर अधिक है।
0: मुझे क्या आवश्यकता है, मित्र ही मित्र की चिकित्सा करें।
2: ठीक है, मित्र की चिकित्सा मित्र ही करेगा, मैं ही सर दर्द लाया हूं, मैं ही इसे साथ ले जाऊंगा। औषधि द्वारा बीमारी दूर करने की अपेक्षा बीमारी होने न देना ही अच्छा है। अच्छा मैं चलता हूं। अब दूर रहने से काम नहीं चलेगा, जैसे भी हो मुझे इनमें शामिल होना ही पड़ेगा। कई दिनों से पढ़ाई में व्यस्त रहने के कारण मैं इधर नहीं आ सका, मुझे क्या मालूम था कि इस बीच मामला यहां तक बढ़ गया है। नहीं नहीं अब इनसे दूर रहने से काम नहीं चलेगा, अब इनसे दूर रहने से काम नहीं चलेगा।
0: मालूम होता है बिहारी बाबू को यह सब अच्छा नहीं लग रहा। जब मैं महेंद्र के सर पर बाम लगा रही थी, बिहारी बाबू की आंखों में मैंने देखा कि वे मानो ये अभिनय देखकर मुस्कुरा रही थी। मालूम होता है इस आदमी को धोखा देना कोई सरल काम नहीं, कुछ भी उसकी दृष्टि से छिपा नहीं रह सकता। ओह, मैं यहां क्यों आई?
2: विनोद भाभी, इस लड़के को इसकी माँ ने मिट्टी किया, अब स्त्री कर रही है, तुम वैसा ना करके एक नया रास्ता दिखाओ।
1: अर्थात?
2: अर्थात मेरे जैसे आदमी को जिसे कोई कभी पूछता नहीं,
1: उससे मिट्टी करो। हम मिट्टी होने की उम्मीदवारी इतनी सरल नहीं है बिहारी, सिर्फ दरख्वास्त देने से ही काम नहीं हो जाता।
0: मिट्टी होने की क्षमता भी तो होनी चाहिए बिहारी बाबू।
2: वो तो अपना गुंडा होने पर भी दूसरे का हाथ लगने से आ जाती है।
0: बहन किरकिरी, भाई अपने इस तेवर का भार अब तुम ही ले लो। बहन, तुम्हारा ये भिक्षुक तेवर मेरी आड़ में तुम्ही से मान की भिक्षा मांगने आया है, अरे कुछ दे दे। हम जाते हैं।
2: वाह भाई वाह, मेरी बारी में बातें दूसरों पर टाल दी जाती हैं, किंतु महेंद्र के साथ नकद कारोबार होता है।
1: बिहारी ये तो क्या पक रहा है।
2: ठीक है मैं चलता हूँ।
0: अरे रे रे रे, आप निराश होकर न जाइए बिहारी बाबू, मैं अभी किरकिरी को भेज देती हूँ।

0: महिंदा, तुम अपना सर्वनाश करना चाहती हो तो करो, किंतु जो सरल हृदय साध्वी तुम पर पूर्ण विश्वास रखती है उसका सर्वनाश ना करो। अब भी कहता हूं उसका सर्वनाश ना करना।
1: पहेली मत पूछाओ बिहारी, जो कुछ कहना है साफ साफ कहो।
0: साफ ही कहूंगा महिंदा, विनोद ने तुम्हें जानबूझकर अधर्म की ओर ले जा रही है और तुम ना समझकर कुमार की ओर बढ़े जा रहे हो।
1: बिल्कुल झूठ। यदि तुम किसी भद्र महिला को ऐसी संदेह भरी दृष्टि से देखते हो तो अंतःपुर में तुम्हारा आना ही ठीक नहीं।
0: ठीक है, मैं जाता हूं।

0: बेटी तू अपना भी ख्याल रखा कर। अरे जब से मैं बीमार हुई हूँ तो हर समय मेरी ही सेवा में लगी रहती है।
1: अरे क्या हुआ माँ, मुझे तुम्हारी सेवा करने में कितना आनंद मिलता है।
0: अरे वही तो तुझ में विशेषता है जी, जब भी तुझ पर कोई काम आ पड़ता है तो तू उस काम को करने में इतनी तल्लीन हो जाती है कि किसी और ध्यान नहीं देती। काश तुम मेरी बहू होती।
1: माँ आप ज्यादा न बोलें, आराम करें।
2: चुन्नी मैं तुमसे कई बार कह चुका हूँ कि मेरे नहाने से पहले मेरे कपड़े तैयार कर दिया करो, पर एक दिन भी तुमने ऐसा नहीं किया, इससे कितना समय बर्बाद होता है।
3: पर हमने तो नौकर से कह दिया था।
2: नौकर से कह दिया था, अपने हाथ से नहीं कर सकती थी। तुमसे तो किसी काम की आशा करना ही व्यर्थ है, तुम कुछ भी नहीं समझती कैसे क्या करना चाहिए। कमरे की हालत देखी है, हर चीज बेतरतीब है।
3: तुम हमें दासी की तरह रखो, दंड दो पर अपने चरणों की सेवा के योग्य बना लो।
2: चुन्नी चुन्नी मुझसे अपराध हुआ है, मुझे मुझे क्षमा कर दो।
3: नहीं ऐसा न कहो, तुमने कोई अपराध नहीं किया, सब दोष हमारा है।
2: चुन्नी मेरी हृदय मणि चुन्नी, मैं हृदय में सबसे ऊपर तुम्हें रखूंगा। अरे हाँ, कॉलेज में कल से हमारी नाइट ड्यूटी पड़ रही है, इसलिए वहां मैस में रहना पड़ेगा।
3: सुनो हमारी एक प्रार्थना है।
2: कहो।
3: तुम हमें रोज एक चिट्ठी भेजा करोगे?
2: और तुम भी?
3: चलो हटो, हमें क्या लिखना आता है।

माँ को प्रणाम करके मुझसे बगैर मिले ही चले गए। मैं इसमें जाकर रहेंगी, दिखाना चाहती हैं कि मेरी परवाह नहीं करती। महेंद्र, आशा के प्रति तुम्हारा प्रेम मेरे प्रणय वंचित चित्त को हमेशा ही मदा करता है। मुझ जैसी स्त्री रत्न की उपेक्षा करके तुमने आशा जैसी क्षीण बुद्धिहीन बालिका का वरण किया। महेंद्र, तुमने मेरे अंतर में एक आग सुलगा दी है। मैं तुम्हें दंड दूं क्या हृदय समर्पण कर दूं? ये आग हिंसा की है क्या प्रेम की? पर चाहे जिस कारण भी हो, चलने के लिए या चलाने के लिए मुझे महेंद्र की जरूरत है। मुझे उनकी जरूरत है, मुझे उनकी जरूरत है। वो जाएंगे कहां जाएंगे? वो उन्हें लौटना ही होगा। वो मेरे हैं।

0: गए, कितने दिन हो गए, लेकिन उनकी चिट्ठी नहीं आई। क्या क्या अभी भी वो हमसे गुस्सा है? उन्हें क्या मालूम हम अपनी हर शाम उनकी चीजों को स्पर्श करके काटा करते हैं। हमने तो उनसे प्रार्थना भी की थी कि हर रोज हमें चिट्ठी भेजा करना।
1: क्यों यहाँ चुपचाप अकेले में क्यों उनकी याद से बातें हो रही हैं?
0: बहन देखो ना, हमसे कहकर गए थे कि हमें रोज चिट्ठी लिखा करेंगे, पर उनकी कोई चिट्ठी नहीं आई। हमें डर लगता है कहीं वो हमसे गुस्सा।
1: अरे रे, रोते नहीं, हो सकता है कि वो ये सोच रहे हो आशा ने चिट्ठी क्यों नहीं लिखी।
0: हमें लिखना नहीं आता बहन। हाँ, हमारी तरफ से तुम चिट्ठी लिखो।
1: अरे इसमें सोचना क्या है, जो दिल में आए वो लिख दो।
0: अब हम चलते हैं।
1: ये क्या बिहारी बाबू, क्या आप बीमार हैं?
2: नहीं तो।
1: तो दोनों आंखें सुर्ख क्यों हैं?
2: अरे हाँ विनोद भाभी, महेंद्र कहाँ गया?
1: कॉलेज में विशेष काम है ऐसा कह के गए हैं।
2: विनोद भाभी तुम आशा की देखभाल करना। आशा इतनी सरला है कि किसी को चोट पहुंचाना नहीं जानती, यहां तक कि आघात से अपनी रक्षा करना भी नहीं जानती।
1: आप निश्चिंत रहें बिहारी बाबू, मेरी आंख की किरकिरी के लिए चिंता करके अपने आप को अधिक कष्ट न दें।
2: अच्छा मैं चलता हूं।
1: आशा के लिए बिहारी बाबू का हृदय कितना व्यथित है। महेंद्र ने आशा से विवाह किया, उस आशा से जिसके साथ बिहारी की बात पक्की हुई थी। वो ही बिहारी बाबू आशा की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। वो चाहते हैं कि विनोदिनी हमेशा आशा के आंसू पूछने के लिए तैयार रहे। ऐसा लगता है जैसे मैंने इसीलिए जन्म लिया है कि मैं आशा के रास्ते के कांटे चुनूं, आशा के सुख में जरा भी कमी ना आने दूं। लेकिन नहीं, मैं एक बार इस महेंद्र को, इस बिहारी को धूल में गिराना चाहती हूं। या तो आशा ही रहेगी या विनोदिनी।
3: इतने दिनों के बाद आशा की चिट्ठी आई है। आशा, मेरी आशा, जरा पढ़ूं तो आशा ने क्या लिखा है।
0: प्रियतम, जिसे भूलने के लिए चले गए हो, इस पत्र में उसकी याद क्यों दिलाऊं? तुम्हारी अवहेलना, उपेक्षा जो कांटे की तरह मेरी पसलियों में समा गई है, वो दिन रात सब कामकाज सब चिंताओं के बीच मुझे बेधती रहती है। नाथ, हाँ नाथ, तुमने जो मुझसे प्रेम किया वो क्या मेरा ही अपराध है? मैंने क्या स्वप्न में भी ऐसे सौभाग्य की आशा की थी? न जाने क्या देखकर तुमने मुझे इतना आदर दिया। लेकिन एक बात समझ न सकी कि घर में रहते हुए भी क्या तुम मुझे फेंक नहीं सकते थे? मेरे लिए भी क्या तुम्हें घर छोड़कर जाने की जरूरत थी? मैं क्या तुम्हें इस तरह पकड़े हुए हूं? मेरे लिए क्या कहीं जाने का रास्ता नहीं रह गया था? मैंने तो कई बार काम जाना चाहा, लेकिन मुझे रोक लिया गया, वरना मैं तो बहकर आई हूं, बहकर चली जाती।
3: ये चिट्ठी, समझा, आशा की आड़ लेकर विनोदनी ने चिट्ठी भेजी है। विनोदनी समझती है कि मैं उसे भूलने के लिए घर छोड़कर आया हूं। उसकी इस स्पर्धा को झूठ सिद्ध करने के लिए मुझे तुरंत ही घर लौटना चाहिए, और अब से मैं विनोदनी से दूर ही रहूंगा। यहां लौटने से

0: ही मैंने सोचा था कि मैं विनोदनी से दूर रहूंगा, लेकिन लेकिन ये स्वाभाविक स्थिति नहीं। सहज भाव से बातचीत करके इसे खत्म कर देना चाहिए।
1: बिहारी बाबू, न जाने महेंद्र बाबू को क्या हो गया है, मुझे अपनी किरकिरी के लिए बड़ी चिंता हो रही है। मैं तो सदा यहां रहूंगी नहीं, पर मेरे चले जाने के बाद तुम उसका ध्यान रखना, वो दुखी ना होने पाए।
2: भाभी, तुम्हें रहना ही पड़ेगा, तुम्हारा अपना कोई नहीं। तुम इस सरला बालिका की सुख दुख में रक्षा करने का भार अपने ऊपर ले लो।
1: लाला जी, मैं सदा यहां कैसे रहूंगी, लोग क्या कहेंगे?
2: लोग जो कहें कहने दो, तुम देवी हो। संसार के निष्ठुर आघात से बालिका की रक्षा करना तुम्हारी ही योग्य काम है। भाभी, पहले मैंने तुम्हें नहीं पहचाना था, मैंने भी संकीर्ण हृदय सामान्य लोगों की तरह तुम्हारे बारे में नीच धारणा बना ली थी कि तुम आशा के सुख से ईर्ष्या करती हो। किंतु बाद में तुम्हारे हृदय का परिचय मिला और तुम पर श्रद्धा हो गई। अच्छा, मैं चलता हूं।
3: सुनो, तुम तो काशी जाकर अपनी काकी से मिला और उनका हमारे लिए दिया उपहार सिंदूर की डिब्बी भी ले आए। सुनो, हमें भी एक बार मौसी की चरण धूली लेने जाने दो ना।
0: चुन्नी, तुम्हें तुम्हारी पुण्यवती मौसी का आशीर्वाद है, वे तुम्हारे ही मंगल के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर चली गई, तुम्हारा कभी कोई अकल्याण नहीं हो सकता।
3: मौसी, तुम्हारा आशीर्वाद सदा मेरे स्वामी के साथ रहे। सुनो, क्या तुम मेरी एक प्रार्थना पूरी करोगे? मुझे एक बार, सिर्फ एक बार उनसे मिलने जाने दो। वो मेरी ताई जी है ना, वो, हाँ, वो मेरी ताई जी है ना, वो काशी जाने वाली है, उन्हीं के साथ मुझे भेज दो।
0: मैं अभी माँ से कहता हूँ। माँ, माँ,
4: क्या है बेटे?
0: माँ, बहू काशी जाना चाहती है, मुझे कॉलेज में काम है, मैं नहीं जा सकूंगा। उसकी ताई जा रही है, उसी के साथ चली जाएगी।
4: हाँ जी, बड़ी अच्छी बात है, वो लोग बड़े आदमी ठहरे, उनके साथ जाने से हमारा गौरव बढ़ेगा ना।
0: महिंदा, महिंदा, तुम साथ क्यों नहीं चले जाते?
5: मैं नहीं जा सकूंगा।
0: तो फिर साथ विनोद भाभी चली जाए तो कैसा रहेगा?
5: बिहारी, अपने मन की बात साफ साफ कहो, छल करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझ पर अंदर ही अंदर संदेह करते हो कि मैं विनोदनी से प्यार करता हूं। प्रेम मैं नहीं करता, बल्कि मैं तुम्हारे सामने कहता हूं कि तुम आशा से प्रेम करो।
0: महेंद्र, ईश्वर तुम्हें क्षमा करे। महेंद्र, मैं जा रहा हूं।
1: लाला जी, किरकिरी के साथ मैं भी काशी जाऊंगी।
0: ना ना भाभी, ये ना होगा। मैं यहां का कोई नहीं हूं, मैं किसी बात में हस्तक्षेप करना नहीं चाहता, इससे भला नहीं होगा। तुम देवी हो, तुम्हें जो अच्छा लगे करो, मैं चलती हूं।
1: लाला जी, मैं देवी नहीं हूं, मैं देवी नहीं हूं। तुम्हारे जाने से किसी का भला नहीं होगा, पीछे मुझे दोष मत देना।
6: समझ में नहीं आता, ऐसे स्पष्ट आरोप का भी प्रतिवाद बिहारी ने क्यों नहीं किया, पर अच्छा ही हुआ, इससे अब वो आशा से दूर चला गया। वो कई दिनों से यहां आए नहीं थे। महेंद्र ने जब कहा कि तुम आशा से प्रेम करते हो, तब उस समय बिहारी का चेहरा कैसा रक्तहीन हो गया था। मैंने बिहारी को एक पत्र लिखा, लाला जी, उस दिन तुम्हारा शुष्क मुख देखने के बाद मैं निरंतर प्राण मन से कामना कर रही हूं कि तुम स्वस्थ हो जाओ, जैसे थे वैसे ही। वो सहज हंसी, वो उदार वाणी फिर कब सुनूंगी? एक पंक्ति लिखकर मुझे जता देना तुम कैसे हो। तुम्हारी विनोद भाभी।

0: विनोद की चिट्ठी लेकर दरबान बिहारी के यहां गया तो मालूम हुआ कि बिहारी रात की गाड़ी से पश्चिम की ओर चला गया है। जब दरबान चिट्ठी लेकर वापस लौट रहा था तो उसे मैं मिल गया। मैंने वो चिट्ठी उसे ले ली और पढ़ने लगा। समझ में नहीं आता कि विनोद ने के मन की गति किस ओर है। है तो क्या मैं विनोदनी से प्रेम नहीं करता कहकर मैंने जिसका तिरस्कार किया है उसी के कारण अभिमान वश मेरी आशा छोड़ दूसरी ओर जा रही है। वो मेरे अधिकार से अलग चली जाएगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे उसे अपनी ओर खींचना ही होगा। हाँ, उसे अपनी ओर खींचना होगा। मुझे उसे अपनी ओर खींचना होगा।
1: व्यर्थ खड़ी हो, भेंट नहीं होगी। लो, तुम्हारी चिट्ठी लौट आई है। मैं जा रहा हूं।
2: लेकिन चिट्ठी खुली हुई क्यों है? मैं पूछती हूँ, चिट्ठी खुली हुई क्यों है?
3: समझी, बिहारी ने चिट्ठी खोली और पढ़कर वापस कर दी। बगैर एक पंक्ति लिखे मेरी चिट्ठी वापस कर दी। मैं अपने चारों ओर आग लगाकर सब भस्म कर दूंगी। मुझे सुख न मिला तो ना सही, लेकिन जिन्होंने मुझे कृतार्थता से भ्रष्ट किया है और समस्त संभावित संपदा से वंचित कर दिया, उन्हें परास्त कर धूल में मिला देने से ही मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा होगा। तभी मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा होगा।

0: बेटी देख रही हो कि महेंद्र आजकल बड़ा विक्षिप्त सा रहता है। शायद बहू के चले जाने के कारण उसे अच्छा नहीं लग रहा। अब मुझसे तो सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाया नहीं जाता। तू ही महेंद्र की देखभाल किया कर बेटी।
1: जरूरत क्या है माँ?
0: हाँ अच्छा अच्छा तब मुझसे ही जो कुछ हो सकेगा करूंगी। चलो जरा देखो तो उसे।
1: नहीं नहीं माँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम मत जाओ, मैं जाती हूँ। जो तुम्हारी आज्ञा होगी करूंगी। कई दिन से तुम्हारे खाने पीने के समय हाजिर नहीं रह सकी, कोई गलती हो तो क्षमा करना।
2: कभी कभी ऐसी गलती का होना अच्छा है क्योंकि बाद में ब्याज सहित वसूल किया जा सकता है।
1: महाजन बताएंगे कि ब्याज कितना हुआ।
2: खाने पीने के बाद हाजिरी को बात करके भी कुछ निकलेगा ही।
1: तुम्हारा हिसाब कितना कठोर है, जो एक बार तुम्हारे हाथ में पड़ गया उसका फिर उद्धार नहीं।
2: हिसाब जो है, पर अदायगी में क्या मिल पाएगा?
1: अदायगी लायक यहाँ है ही क्या, तब भी तो बंदी कर रखा है।
2: किरकिरी, क्या ये तुम्हारे लिए जेलखाना है?
1: कौन जाने, बाद में तुमसे कौन जीत सकता है। अच्छा जाती हूँ, काम बहुत है।
2: जब बंधन स्वीकार किया है तो जाती कहाँ हो?
1: जी जी छोड़ो, जिसे भागने का कोई रास्ता नहीं उसे बांधने की चेष्टा क्यों।
3: अरे आशा तू, बेटी बहन सब उससे मिलकर गया ही था, फिर कुछ समय बाद तुम मेरे पास काशी चली आई। बेटी कहीं कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं? सच बता सच बता, महेंद्र अच्छी तरह तो है ना?
4: नहीं मौसी, ऐसा कुछ भी नहीं, सब ठीक है।
3: हे भगवान, भगवान सदा तुम्हें सुखी रखे। अरे हाँ, बिहारी का

0: वाली बेटी, वो क्या ब्याह करेगा ही नहीं? उसकी तबीयत तो ठीक है ना?
1: उनकी बात मुझसे न पूछो।
0: अरे पता तो, क्या बात है?
1: वो मैं न बता सकूंगी।
0: बेटी बेटी सुन तो, सुन तो चुन्नी। हे भगवान, सोने जैसा लड़का, प्यारी में ऐसा क्या परिवर्तन हो गया जो चुन्नी आज उसका नाम सुनकर उठ गई? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, इलाहाबाद से कुंजी की सास आने वाली थी, शायद शायद वो ही आ गई। चुन्नी चुन्नी बेटी, लाल टेबल के नीचे जा और दरवाजे खोल दे।
1: अच्छा मासी, खोलती हूँ।
2: हाँ भाभी जी, मैंने तो सुना था कि तुम काशी नहीं आओगे।
1: मासी मासी मासी मासी मासी मासी, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ मासी, उन्हें अभी यहाँ से चले जाने को कह दीजिए।
0: किसे चुन्नी, किसे?
1: वो बिहारी लाला जी है ना, वो यहाँ भी आ गए मासी।
0: अच्छा बिहारी, बिहारी बिहारी।
2: काकी, मैं तुम्हारे मंगल चरणों का आश्रय लेने आया था।
0: क्या?
2: बस कुछ ना कहो, चलता हूं। प्रणाम।
1: सुनो, हम तुम्हें लिख रहे हैं। बिहारी लाला जी एकाएक आश्रम यहां चले आए थे, तुम जल्दी आकर हमें ले जाओ। ताऊ जी के लौटने का भी कुछ नहीं, तुम जल्दी आकर हमें ले जाओ, हमें ले जाओ।
3: गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बांग्ला उपन्यास चोखेर बाली का रेडियो नाट्य रूपांतरण आंख की किरकिरी का पहला भाग अभी आपने सुना। रूपांतरकार एवं निर्देशक नंदलाल शर्मा। ये हमारे आकाशवाणी जयपुर केंद्र की प्रस्तुति थी।
4: बॉम्बे टॉकीज,
5: साइलेंस, लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन।
6: दोस्तों नमस्कार, बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में पिछले हफ्ते आप सुन रहे थे दीपाली सहाय से यूनुस खान की बातचीत। आप सुन रहे थे दीपाली इंडियन आइडल और अपने बचपन की बातें साझा कर रही थी और समय सीमा के तहत इस बातचीत को विराम देना पड़ा। तो आइए आज सुनते हैं इस बातचीत का दूसरा भाग।
7: ये जो भंवर वाला दौर था, झंझावात वाला दौर था, इससे निकलकर किसी फैसले पर दीपाली कैसे पहुंची?
8: हुआ ये कि जब हम वापस लैंड किए पटना एयरपोर्ट पे, तो काफी भीड़ आ गई थी एयरपोर्ट पे, मीडिया वाले सारे, पत्रकार और माइक्स और कैमरास। मेरे माता पिता पहली बार ऐसा देख रहे थे कुछ, क्योंकि अभी जो बेटी कुछ महीने पहले बंबई गई थी वो लौटी है, तो वो मेरी बेटी नहीं है, अब पूरे बिहार की बेटी के नाम से ये अब सिर्फ मेरी धरोहर नहीं है
7: जी।
8: और जब हम एयरपोर्ट पे उतरे तो मेरे पापा से सब पूछने लगे, अगला क्या, व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि जीवन में यही सत्य है, जो आपने पा लिया हो गया, उसको एंजॉय करने का हक इंसानों के अंदर वो संस्कार ही नहीं डाला गया है कि जो है
7: अब आगे क्या,
8: आगे क्या,
7: खुद को भी अभी तक ये पूरा स्वीकार नहीं हो रहा है मन को।
8: करेक्ट। और ये इंसानों की फितरत है, मतलब हम इसको, ये नहीं बदली जा सकती है, ये किसी एजुकेशन सिस्टम से भी नहीं बदला जा सकता, किसी संस्कार से भी नहीं बदला जा सकता, इसको कई करोड़ों जन्म लगेंगे कि जो आया है उसको जीना पूरी तरह से, जो स्थिति है चाहे खुशी हो चाहे गम हो उसको पूरी तरह से जीने दो। अगला क्या जो सवाल है, ये बहुत मुश्किल है किसी के लिए भी इससे गुजरना। और तब उस वक्त जब अभी अभी किसी की मृत्यु हुई है और पूछे आप अगला क्या, वैसा महसूस होता है, क्या क्या मतलब, क्या अगला क्या। पर मेरे पिताजी, दीपाली बिहार से पहली लड़की थे हम जो इंडियन आइडल में गए थे, तो मेरे पिताजी को काफी प्रेशर आया, उनको ये पहले देख के वो बिल्कुल, हमको ऐसा हमको लगता है कि वो एकदम भौचक हो गए होंगे।
7: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
8: क्योंकि ये पहली बार हो रहा था कि ऐसे मेरी बेटी एयरपोर्ट, एक तो फ्लाइट वाले हम थे नहीं, हम ट्रेन वाले लोग थे, हम फ्लाइट से उतर के, क्योंकि इंडियन आइडल वालों ने फ्लाइट से भेजा है, और मेरे पिताजी, इतनी मीडिया, इतने लोग, कुछ 200-250 लोग आ गए थे, फूल

0: माला और बच्चियां ऑटोग्राफ लेना चाहती थी, मेरे घर पे लड़के आते थे बाइक से और फूल फेंक के जाते थे। ये स्थिति जब हम मुंबई में चल रहा था तो ये स्थिति होने लगी थी। पटना में मेरे साइज का बुके आना आता था घर पे, मेरे साइज के सॉफ्ट टॉयज आने लगे थे। अखबार में छपने लगा कि दीपाली का फेवरेट मिठाई कौन सा है, तो वो लोग लेके घर आते थे इस उम्मीद पे कि दीपाली से मिलना हो जाएगा। तो इतना प्यार देख के अब तक मेरे पापा जो थे वो बैकफुट पे खेल रहे थे जीवन में, क्योंकि बिहार में पापा मेरे पुलिस वाले थे, उनके पास ज्यादा समय नहीं था। और हमको जो असल में जो मेरे पिता का रोल प्ले करते थे वो थे मेरे चाचा, मेरे जिनको हम बाबूजी बोलते थे।
1: अच्छा।
0: बाबूजी ही हम लोगों को मेरा म्यूजिक स्कूल लेके जाना आना, बाबूजी ही सब कुछ करते। बट जब ये दौर हुआ जहां पर अब हम बाहर जा रहे हैं, तो मेरे पिताजी फ्रंट फुट पे आए एयरपोर्ट पे और बोले दीपाली कुछ ही महीने में अब मुंबई शिफ्ट हो जाएगी और वहां जाकर हिंदी फिल्मों में गाना गाने की कोशिश करेगी।
1: उन्होंने एकदम बोल दिया,
0: पब्लिक अनाउंस कर दिया। और घर आने के बाद मेरे पापा मम्मी की हो गई लड़ाई।
1: हाँ।
0: आपने ऐसा किस बेसिस पे बोल दिया? अब तो आ गई थी ना वापस, हम तो कभी नहीं चाहते थे कि ये मुंबई जाए, हमको बहुत डर लगता है उस जगह से। हम तो चाह रहे थे कि ये पढ़ लिख के आईपीएस बन जाएगी, अभी भी छोटी है, अब तो शुरू हुआ है इसका। अब हार गई तो चलिए, इसका भी शौक पूरा हो गया, इसको इंडियन आइडल में जाना था। हो गया ना, पूरा कर ली ना, टॉप 7 में आ गई, हो गया अब पढ़ाई करो। लेकिन अब हमको भी तो चस्का लग गया था ना, ये दुनिया हमने देख ली थी आंख से, हमने महसूस कर लिया था यहाँ जी के, ये जीवन तो हमको कहीं नहीं मिलने वाला है। तो पापा बोले कि नहीं, हम लोग तो अब तो भेजना ही पड़ेगा इसके। मुंबई बहुत महंगा शहर है, ये तो मेरे माँ बाप को अंदाजा लग गया था। उस वक्त उन्होंने अपने जो भी जमा पूंजी थी थोड़ी सी, उसको तोड़ा। 2 महीने बाद मेरे साथ मेरे पापा मम्मी मुंबई आए, मेरे लिए एक जगह देखी गई जहां पे हम रह सके। क्योंकि तब क्या होता है, तब शोज होने शुरू हो जाते हैं, आप ट्रैवल करने लगते हैं। तो पटना से बहुत फ्लाइट्स नहीं होती थी तब बहुत कम फ्लाइट्स होती थी, तो मुंबई रहना जरूरी था, क्योंकि हर 10वें दिन या एक हफ्ते में एक बार आप फ्लाई कर रहे हैं, कहीं शो करने जा रहे हैं।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: पर हम लोग इतने भोले थे कि हमें ये नहीं पता था कि ये जो शोज होते हैं इसके पैसे कमाते हैं हम लोग, ये नहीं जानते थे हम। बेचारे पापा मेरे अपना जमा पूंजी तोड़ के और उसमें से हमको लेके मुंबई पहुंचे, एक छोटी सी जगह ढूंढी, रखा वहां पे, और अकेले रहने सकते थे, बहुत छोटी बच्ची थी वो, 18 साल की दीपाली, तो उसको एक पीजी में रखा गया जहां पे 2 और लड़कियां कमरा शेयर करती थी। बैंड्रा में एक पीजी में रहना शुरू किया। और एक दिन अचानक ऑफिस से फोन आया कि आप, और शोज होने लगे मुंबई में, शोज होने लगे, और एक दिन अचानक से ऑफिस से फोन आया कि आप आइए और अपना चेक लेके जाइए। तो हमें पता नहीं था चेक क्या, चेक तो गए तो पता चला जितने भी हमने स्टेज शोज किए थे अब तक उसके पैसे मिलते हैं,
1: और वो अच्छी रकम थी,
0: और वो बहुत अच्छी रकम थी।
1: आंखें एकदम,
0: खेल तो वहां से पलट गया सर।
1: हाँ।
0: ये रकम तो हम कैसे समझाएं कि
1: बिल्कुल
0: ये क्या हो गया था। कुछ समय के लिए जब पहली बार चेक मिला और हम बाहर ऑफिस के बाहर निकल के पापा को जब चेक बताए जो अमाउंट था, उस पे जो अमाउंट लिखा था वो हम पढ़े भी नहीं, क्योंकि हमको लगा वो तो पॉसिबल ही नहीं है। हमने कुछ हजारों में अमाउंट बताया पर वो कुछ लाखों में था। ये स्थिति थी, जीवन वहां से पलट गया मेरा। दैट फर्स्ट चेक गेव मी द कॉन्फिडेंस कि अब हमको मेरे माँ बाप के ऊपर जो प्रेशर है, हमको बहुत हमको लगता है कि बेटियों को ऐसे ऐसे पाला जाता है कि समाज कर देता है, माँ बाप नहीं
1: थोड़े में खुश रहना,
0: वो संतोषी पैदा ही संतोषी होती है, पैदा होंगी और नहीं तो समाज बना देगा कि भाई तो बहुत बड़ी बात है कि तुम्हारे पापा तुमको पढ़ने भेज रहे हैं, इतने में ही खुश है बेटी, हाँ ये बात तो सही है, पापा पढ़ने तो भेज रहे हैं। तो मेरे अंदर एक बहुत गिल्ट फील होता था कि मेरे पापा को इतना, मेरे पापा मेहनत करते हैं हम और हमको, मेरे पर सारा खर्चा कर देंगे, दीदी को भी पढ़ाना है तो कैसे होगा। लेकिन वो चेक वो जीवन में एक दूसरी दीपाली को लेकर आया बाहर,
1: और उसके बाद वो एक अलग उड़ान शुरू हुई,
0: एक अलग उड़ान शुरू हो गई।
1: लगातार शोज हो रहे थे और हर शोज में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था
0: और इंडियन आइडल ने तब तक अप्रोच कर दिया कि आप इसे होस्ट करिए।
1: हाँ हाँ।
0: तो जो पिछले साल जो लड़की कानपुर के एक लाइन में खड़ी थी जिस शो में एक हिस्सा बनने के लिए, इस साल वो लड़की उस शो को होस्ट करने जा रही थी।
1: बिल्कुल।
0: तो अब वो लड़की वो थी ही नहीं जो दीपाली पैदा हुई थी पटना में।
1: हाँ।
0: वहां से खेल बदलने लगा, कॉन्फिडेंस भी बदलने लगा।
1: बिल्कुल। यहाँ कामयाबी भी आ रही थी, काम भी आ रहा था और जिंदगी बहुत कुछ सिखा रही थी, परिस्थितियों के मुताबिक बदलना, अपने आप को संभालना। यहाँ मैं आगे की बातचीत करने से पहले एक गाने का जिक्र करना चाहता हूँ, गंगा मैया तो है पीरी चढ़े हुए को गाना जो आप गाते

0: क्या बात है, ये गाना तो जैसे हमारी संस्कृति का हिस्सा बन चुका है, हमारे मानस का हिस्सा बन चुका है। मुझे याद है कि जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो ये कहा जाता था कि पहले बनारस जाओ, गंगा में डुबकी लगाओ, गंगा मैया देखो, फिर गांव वापस आओ।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: तो ये एक पूरा एक दौर था जब इस फिल्म को लेके दीवानगी थी। ये गाना सुनते हैं।

0: जिंदगी, जाने क्या क्या हो रहा था।
1: तो ये उन्होंने गजेंद्र सिंह ने ही एक दिन फोन किया, और ये वो गजेंद्र सिंह है जो दीपाली के दिमाग में सारे गामा के डायरेक्टर हैं, जो जिनको सोनू निगम एक जमाने में होस्ट करते थे और हम बचपन में देखा करते थे। तो फोन आया कि गजेंद्र सिंह बोल रहा हूँ, तो मेरा रिएक्शन ऐसा था, अच्छी बात है, ओके बाय, क्योंकि हमको विश्वास नहीं हुआ कि खुद गजेंद्र सिंह ने फोन किया। फिर दोबारा कॉल आया, दीपाली मैं गजेंद्र सिंह बोल रहा हूँ, साईं बाबा प्रोडक्शन, सारे गामा। जब उन्होंने अपना परिचय दिया तब हमको समझ आया कि अरे ये तो असली वाले गजेंद्र सिंह है। तो हम बोले हाँ जी सर बोलिए। तो हम एक शो बना रहे हैं, भोजपुरी में है, तो हम चाहते हैं कि तुम उसमें एक्टिंग करो। बोले सर हमको एक्टिंग नहीं आती है। तो बोले वो तुम्हारा काम नहीं है डिसाइड करना, तुम्हारा काम है हाँ बोलना, तुमको आती है कि नहीं आती है ये तो डायरेक्टर बताएगा, हम बताएंगे तुमसे, कराएंगे हम करा लेंगे, हमको पता है। एंड दैट्स हाउ दिस बड़की मलकाई नाम था इस सीरियल का, ये शुरू हुआ मेरे जीवन में। और एक्टिंग का हमको सच में मतलब ठीक है कि मूड इंडिगो में हम लोगों को फर्स्ट प्राइज मिल गया था, बट ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम बहुत अच्छा एक्टिंग कर लेंगे। बट क्योंकि उस जमाने में बहुत अच्छे पैसे थे, हमको ये भी नहीं पता था कि पर डे बेसिस पे सीरियल में पेमेंट होते हैं, सो आई थॉट कि इट्स अ वेरी गुड आइडिया। और हुआ क्या कि इंडियन आइडल में मेरे ना वोकल कॉर्ड्स फट गए चिल्लाने की वजह से। तो एक बहुत बड़े डॉक्टर थे यहाँ पे, उन्होंने बोला कि अब तुम जीवन भर कभी गा नहीं सको, तो तुम गाना तो भूल ही जाओ, ये तुम्हारा करियर यहाँ पे गाने का खत्म होता है। और मेरे वोकल कॉर्ड्स का जो उस समय जो एक वो लैरिंजियोग्राफी या कुछ कहते हैं उसको, उसके पिक्चर्स देखे उन्होंने, तो पिक्चर्स में वोकल कॉर्ड्स लिटरली फट चुके थे और खून बह चुका था, पूरा रेड सोर रेड था मेरा वोकल कॉर्ड। तो हम भी डर गए, हमको लगा कि तो वो ही उन्होंने बोला कि कुछ दिन तक तो तुमको बिल्कुल साइलेंस पे रहना होगा क्योंकि उसको रेस्ट देना जरूरी है। और फिर उन्होंने बोला कि सिंगिंग एज अ करियर भूल जाओ, क्योंकि अब तुम अपने वोकल कॉर्ड्स को फाड़ चुकी हो चिल्ला चिल्ला के वो रियलिटी शो होस्ट करने के चक्कर में, तो गाना तो तुम गा नहीं सकती हो, और अगर बहुत बोलोगी तो जो बोलने वाली आवाज है वो भी चली जाएगी। तो हो सकता है वो उनका डराने का तरीका हो एक छोटे बच्चे को, इस बहाने शायद ठीक हो जाए, बट आई टुक इट वेरी सीरियसली। तो जब ये एक्टिंग का ऑफर आया तो हमको लगा ठीक है, करियर सिंगिंग में तो है नहीं जीवन अब मेरा, मेरा तो गला चला गया है गाने के हिसाब से, तो एक्टिंग कर लेते हैं। तो एकदम शिद्दत से हम उसमें घुस गए एक्टिंग करने में, और फिर मतलब फिर बाकी जगह से भी ऑफर्स आने लगे और हम करने लगे, रियाज और गाना तो कहीं चला गया जीवन से।
0: और ये जो गले की समस्या थी, इसके बारे में पहले पता नहीं था कि ऐसा हो सकता है कि वोकल कॉर्ड्स पर इफेक्ट पड़ता
1: है? नहीं पता था, अगर पता होता तो शायद। पर अभी हम सोचते हैं कि अगर कोई बोले कि इतना बड़ा रियलिटी शो होस्ट करना है आपको लेकिन आपके गले पे असर पड़ेगा, तो भी हम ना नहीं बोलते,
0: बिल्कुल
1: नहीं बोल पाते।
0: कैसे संभाला फिर अपना गला उन दिनों में जबकि ये कहा गया कि पूरी तरह से साइलेंस रहना है वगैरह वगैरह?
1: वो कुछ दिन तो हम बहुत परेशान रहे क्योंकि बहुत दर्द होता था गले में, तो हम बहुत रोते भी थे, माँ थी मेरे पास यहीं पर अंदर ही अंदर अब समझ आ गया था कि मेरा करियर तो है ही नहीं म्यूजिक में, हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो मेरा दिमाग, क्योंकि हम आई वॉज अ डूअर होता है ना, कुछ लोग करने वाले होते हैं, तो हमको करना था कुछ। अब हम आ चुके थे मुंबई और शोज जो थे वो पैसा दे रहे थे, हमको नहीं पता था कि शोज से पैसे आएंगे, पर अब तो आ चुके थे, चस्का तो वहां से भी लग चुका था, और यहाँ पे म्यूजिक करियर जाता रहा। तो ऐसे में एक एक्टिंग करियर शुरू हुआ, तो हमको लगा ठीक है, मतलब तो कुछ कला से रिलेटेड करने में है ना, तो ये भी तो यू नो
0: इसी
1: का आर्ट का ही एक रूप है ना एक्टिंग, और अच्छा है, डिसेंट है। भोजपुरी का जो उस समय इमेज था मतलब वल्गर गानों का, ये शो उस इमेज को भी तोड़ रहा था, एक अच्छा डिसेंट पारिवारिक एंटरटेनिंग शो, तो हमको लगा सही है। तो पहले कुछ दिन कुछ ही हमको लगता है कुछ ही महीने का डिप्रेशन रहा होगा, और उसके बाद फिर चीजें पलटने लगी, आई स्टार्टेड एंजॉयिंग दैट।
0: और उसके बाद फिर वो जो एक्टिंग का सिलसिला चल पड़ा,
1: करेक्ट,
0: उसमें कौन कौन से सीरियल्स आए वो भी हमारे सुनने वालों को बताइए।
1: सबसे पहले तो बड़की मलकाइन था, फिर उसके कुछ ही दिन बाद दूरदर्शन नेशनल पर अनुदामिनी करके एक शो आया, वो बहुत हिट हुआ, उसमें मेरा वैम्प का रोल था।
0: ये अलग चैलेंज हो गया।
1: सो मेरे लिए, बट ये चैलेंजेस बहुत काम कर रहे थे क्योंकि वो चीजें जो आप सोच भी नहीं सकते, अगर आपको वो करनी पड़े तो आप अपने आप को फिर और बेहतर पहचानते हैं कि अच्छा ये भी सक्षमता है, ये भी करने में सक्षम होंगे हम, ये भी, ये सारी चीजें आप सेल्फ एक्सप्लोरेशन की जर्नी है जब आपने अपने ऊपर कोई कैप नहीं लगाया है कि हम

0: तो ये गाना हमने सुना गंगा मैया तो है पीले चढ़े वो, और बिहारी लड़की यहाँ आते आते अभिनय के मैदान में भी उतरने वाली थी, ये कैसे हुआ है?
1: ये गजेंद्र सिंह जो है, हाँ, जो सारेगामा
0: के प्रोड्यूसर थे,
1: डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, उनका अचानक एक दिन फोन आया। उस समय भोजपुरी का एक नया चैनल लॉन्च हुआ था और उन लोगों को नए शोज बनाने थे और
0: बड़े धूमधाम धड़ाम तरीके से शुरू हुआ,
1: बहुत धड़ाम, मतलब बंबई में बहुत बड़ा ऑफिस था भोजपुरी चैनल होने के बाद भी, जितना बड़ा उनका ऑफिस था हिंदी वाले भी दंग रहते थे कि ये क्या चल रहा है।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: वो उस वक्त का जो दौर था,
0: सीरियल बनने लगे, रियलिटी शो बनने

0: यही करेंगे। तो फिर आप एक जर्नी पर निकल पड़ते हैं इंसानी तौर पे, तो वो मेरा शुरू हो गया था अनजाने में।
1: बिल्कुल बिल्कुल, जिंदगी अपनी तरह से
0: आई वॉज अलाउिंग कि जीवन को जैसे बहना है बहू, क्योंकि अब तो हम जो सोच के आए थे कि हम बहुत जल्द, मेरे पापा बोले थे कि अब ये मुंबई जाएगी और हिंदी फिल्मों में गाने का कोशिश करेगी, वो तो मेरा चूर हो गया 2 ही महीने में जब डॉक्टर ने बोला नहीं पॉसिबल है। तो फिर हमने एक्टिंग को एक्सेप्ट किया और भारत की शान, दूरदर्शन पे ही एक रियलिटी शो होता था भारत की शान, उसको भी होस्ट किया। जय हनुमान एक सीरियल आता था सोनी एंटरटेनमेंट पे, उसमें एक्टिंग की, उसमें भी वैम्प का रोल था, स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी, महाराणा प्रताप, बस थोड़े से अनजाने, नीम नीम शहद शहद, बींद बनूंगा घोड़ी चढ़ूंगा, इस तरह के छोटे छोटे शोज में अच्छे इंपॉर्टेंट रोल्स कर करके आई थिंक मेरे को 6 साल निकले।
1: और ये जो गायकी वाला मामला था वो
0: तो बस महीने में जैसे 20 दिन की शूटिंग और 10 दिन जो बचा है उसमें कभी कोई शो मिला तो कर लिया।
1: और गला तब तक
0: संभल गया था, पर रियाजी गला नहीं था वो। वो तो उसके अंदर का चोट हील हो गया था, वो मेरे दिमाग का फितूर था कि वो चोट हील नहीं होगा, अब कभी कुछ नहीं होगा। बट एट द सेम टाइम शोज जो उस समय होते थे, उस समय शोज में प्रायोरिटी ये नहीं होता था कि सुरीला गाओ, ऑडियंस नाचनी चाहिए। तो गाने के ऊपर उतना प्रेशर है नहीं, कोई भी गाना चला दो ऑडियंस नाच रही है। तो शोज अच्छी मेरी अच्छी कट रही थी कि शोज भी चल रहे थे और एक्टिंग भी चल रहा था, और अब करियर तो है नहीं म्यूजिक में सिंगिंग में, तो रियाज तो करने की जरूरत है नहीं, ऐसा जीवन चल रहा था मेरा।
1: और मम्मी पापा तब तक पटना में ही थे?
0: वो लोग पटना में ही थ्रू आउट रहे, मतलब पूरे टाइम वो लोग पटना, पापा क्योंकि सरकारी नौकर थे तो वो शहर तो नहीं छोड़ सकते थे, माँ आना जाना करती थी ऑफकोर्स, वो बेचारी बट गई थी अपने पति और अपने बच्चे के बीच, क्योंकि बड़ी बहन जो थी वो बैंगलोर में LLB कर रही थी और वो प्रॉपर लाइफ जी रही थी जो एक उस उम्र का बच्चा जीता है, हॉस्टल लाइफ, यू नो क्लास जा रहे आ रहे, पर उनकी ये बेटी जो थी वो एक अद्भुत दुनिया में पहुंच गई थी। मतलब एक बंदा है उस रियलिटी शो के बाद, उसने बोला चलो बेटा मैं तुमको मोंटी शर्मा से मिलवाता हूँ। हम लोग पहुंच गए यशराज के स्टूडियोज में, मोंटी शर्मा उनके सामने बैठ के, सांवरिया फिल्म आ गई थी और उन्होंने गाना भी सुना, और हम लोग जब वापस लौट रहे थे तो रणबीर कपूर से भी मुलाकात हो गई, तो ऐसा लगा कि वाह अब तो बस प्लेबैक मिल ही जाएगा। और वो ही टाइम था जब जो रियलिटी शो उसको होस्ट करने के ठीक पहले का टाइम, जब मेरा गला बिल्कुल रेडी था, जब माँ बाप को लगा था कि ये प्लेबैक में कुछ करेगी। और हमने मुलाकात की, हम जब घर वापस आए तो उस बंदे ने जिसने हमें मिलवाया बिना मांगे, उसने हमारी जो मीटिंग करा दी उसके एवज में उसने बोला कि उसकी कोई विदेशी मित्र मेरे पास रहेगी 3 महीने के लिए। तो मेरी माँ को ये बात खटक गई, क्योंकि ये बात उसने तब नहीं बोला जब वो हमें मिलवाने ले जा रहा था,
1: ये बाद में बोला गया
0: जब उसने हमें मिलवा दिया। और जब मेरी माँ ने मना कर दिया कि नहीं अनजान कोई लड़की नहीं रहेगी तुम्हारे साथ, तो उसने बोला पर मैंने तो तुम्हें मोंटी शर्मा से मिलवा दिया था, तब भी तुम मना कर रही हो मुझे। तो हमें ये गेम समझ आया कि यहाँ पे ऐसे ही होता है, एक हाथ दे एक हाथ ले फेवर्स, कोई फ्री में
1: करण बनते हैं।
0: हाँ, यहाँ कोई आपके लिए फ्री में नहीं कुछ करेगा, वो आपको लेके, और वो बहुत क्लियरली उसने बोला कि बट हम तो अभी तुमको मोंटी शर्मा से मिलवा के ला रहे हैं भाई,
1: तो ये तो मानना ही पड़ेगा।
0: तो ये तो तुम कैसे मना कर रही हो, मतलब तुम ये मना कर रही हो तो मतलब हम तुमको अब जीवन में कभी किसी म्यूजिक डायरेक्टर के पास नहीं ले जाएंगे। तो अब हम लोग पटना से उठ के यहाँ आए हुए, हमारी तो दुनिया हिल गई। और मेरे पिताजी वैसे भी बहुत पुलिस वाले हैं, वो दुनिया के एक उस आयाम को देखते होंगे जो हम नहीं देखे हैं, तो उनको डर भी बहुत लगता है अपनी बेटियों के लिए, हर बाप को लगता है, पर पुलिस वाले थोड़ा ज्यादा डरते हैं क्योंकि वो थोड़े ज्यादा गंदगी देखते हैं, जो गंदा साइड है, जो कठिन साइड है जीवन का वो ज्यादा देखते हैं। तो मेरे पापा हमको उस दिन एक बात समझाए कि बेटा किसी भी काम को करने के लिए अगर झुकना पड़े तो मत जाना, अपनी इज्जत अपनी डिग्निटी को सबसे ऊपर रखना, और अगर तुम्हारा मन कह रहा है कि उस जगह पे तुमको डर लग रहा है तो वहां से हट जाना, निकल जाना, काम नहीं मिले मत करना, पर कभी भी किसी के सामने हाथ मत फैलाना। क्योंकि उनको ये डर था कि अगर ये छोटी बच्ची है ये काम मांगेगी तो एवज में उससे क्या मांग ले, ये पता नहीं जज कर पाए कि नहीं कर पाए। और क्योंकि दीपाली एक किताबी बच्ची थी,
1: अक्षरशः मान लिया उसने। उसने
0: शब्दशः उस बात को हमने कर लिया फॉलो. वैसे भी कुछ ही दिनों बाद वोकल कॉर्ड्स फट गए. ये सब कुछ यू नो ये अपने आप ये चीजें होती चली गई कि सिंगिंग से मेरा नाता रिश्ता टूट गया पूरी तरह से 2012 तक.

0: और ये सारा समय आपको जो है ये ले जा रहा था एक्टिंग की दुनिया में।
1: एक्टिंग की दुनिया में एक्टिंग करते करते ऐसा लगने लगा कि ये एक्टर जो है उसको तो सारा काम वही करना होता है जो डायरेक्टर बोलता है। तो बनना तो हमको डायरेक्टर है, आई एम अ लीडर।
0: ये यानी मंजिल जो है वो हर एक पड़ाव पर नई नजर आती रही।
1: बिल्कुल।
0: और यहाँ से FTI दिखने लगा।
1: बिल्कुल।
0: मतलब ये बहुत बड़ा टर्न नहीं था कि सिंगिंग से एक्टिंग और एक्टिंग से डायरेक्शन?
1: हाँ टर्न था, बहुत बड़ा टर्न था। लेकिन हम बोले ना कि ये मेरा सौभाग्य है कि कभी कोई मेरे माँ बाप मेरी बहन कभी किसी ने क्वेश्चन नहीं किया कि तुम क्या कर रही हो, तुम करना चाहती क्या हो। कभी कोई नहीं हमको ये सवाल पूछता।
0: तो आपने एक दिन ये तय कर लिया कि आपको फिल्म इंस्टीट्यूट में जाकर डिप्लोमा लेना।
1: हाँ, और इसके लिए एक्टिंग छोड़ के बाकायदा, और तब तक इधर पैरेलली मेरा ग्रेजुएशन भी हुआ मुंबई में।
0: हाँ हाँ, अरे वो तो एडमिशन ले लिया यहाँ कॉलेज में, ये तो मैं भूल गया बात करना।
1: यहाँ हमने एडमिशन ले लिया और मेरा ग्रेजुएशन हुआ मास मीडिया में।
0: तो ये क्लासेस
1: जो थे, ये प्रिंसिपल काफी दयावान थी, वो रियलिटी शो देखती थी और शी वॉज अ फैन, शी वॉज अ सपोर्टर, तो उन्होंने इतनी छूट दे दी
0: रेगुलर क्लासेस नहीं आओगी तो
1: चलेगा। तो वो वहां पे आई थिंक मेरा लक फेवर्ड मी एंड ग्रेजुएशन, इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ हर कि मेरा ग्रेजुएशन हो गया, क्योंकि माँ बाप का ये भी था कि बेटा डिग्री तो चाहिए, बिना डिग्री के बिहारी जीवित नहीं रह सकता है।
0: लेकिन ये बहुत बढ़िया बात है, ये बहुत जरूरी बात है और उसमें आपने इस पर फोकस किया ये भी उतनी ही बड़ी बात है कि एक तरफ जब एक्टिंग का मामला चल रहा है, प्रोफेशन सेट है, उसके बाद
1: प्रोफेशन सेट है, पैसे सेट है, मतलब एक 18-20 साल की लड़की के लिए जितने पैसे हम कमा रहे थे, अभी भी सोच के हमको ऐसा लगता है कि मतलब हम गलत रास्ते कैसे नहीं गए, ये कौन सी कृपा थी मेरे ऊपर।
0: ये सारे संस्कारों का खेल,
1: ये सारे संस्कारों का खेल है, ये मेरे माँ बाप के दिए हुए संस्कार थे। और 6 साल बाद जब हम सोचे कि हमको और पढ़ना है, FTII जाना है, तो वो मेरे पिताजी बोले बेटा तुम घर आ जाओ, कोई बात नहीं, अभी कोई कमाई नहीं, कोई काम नहीं, तुम घर आओ, मेरे पिताजी मेरे साथ बैठ के FTII की तैयारी शुरू कर।
0: एक गजब। तो आपने तब एक्टिंग भी छोड़ दिया,
1: बिल्कुल छोड़ के, सब कुछ छोड़ के मुंबई से वापस घर पटना।
0: ये तो बहुत बड़ा टर्न था।
1: हाँ, ये काफी बड़ा टर्न था, बहुत बड़ा टर्न था।
0: और FTII की तैयारी किस तरह की?
1: एक तो पता नहीं था कि फिल्म देखा कैसे जाता है। फिल्म देखना हमें मसाला फिल्में देखने आती थी, मनमोहन देसाई जी की जो ग्रैंड सक्सेस फिल्म जो बिहार में चलती थी। मेरे लिए फिल्म देखना मतलब एंटरटेनमेंट, बट FTII वाज अ सीरियस बिजनेस। और वहां पे जब हम एक्टिंग कर रहे थे तो मेरे अंदर ये था कि डायरेक्टर जो बोल रहा है वही करना पड़ता है, तो भैया जो लीडर है हमको वही बनना है। जिस भी प्रोफेशन में हम काम करें, जो लीडर है हमको तो वही बनना है। ये छोटा जो क्या बोलते हैं, बाल मन जिसको कहते हैं, वो अपना ही कुछ इन्फ्लुएंस निकालता रहता है। तो जैसे एज अ कैरेक्टर हमको ऐसा लगता था कि मेरे कैरेक्टर को ये लोग रुलाते बहुत है, इतना नहीं रो सकती है कोई, वो पलट के क्यों नहीं बोल रही है जब उसके साथ इतनी ज्यादती हो रही है। तो ये जो कहानी लिख रहा है ना, हमको वहां बैठना है, सो दैट आई कैन टेल माई ओन स्टोरी, मे बी यू नो, ये मेरे दिमाग में, ये
0: टू कंट्रोल द थिंग,
1: करेक्ट,
0: एंड टेल योर स्टोरी,
1: करेक्ट, टू टेल माई स्टोरी इन माई वेज। क्योंकि आप जो दिखाते चले जा रहे हैं ये सच नहीं है, इतनी प्रताड़ना कोई इंसान जीवित तो नहीं सह सकता है, वो कभी तो रिटेलिएट करेगा। तो वो रिटेलिएशन भी वो उस कैरेक्टर का बहुत सीमित दिखाते थे कि वो बस उसने एक बार ऐसे देख लिया चौंक के, बट मेरे नैरेटिव में वो फिट नहीं बैठ रहा था। तो हमको लगा ये कर कौन रहा है, ये खेल क्यों हो रहा है। और मेरी डायरेक्टर से बहस भी होती थी कि सर कभी तो आप पलट के मुझे जवाब देने दो इनको। तो डायरेक्टर ने बताया कि भैया जो राइटर लिखेगा और जो डायरेक्टर बोलेगा यही होगा। तो मेरे दिमाग में अच्छा तो हम अपनी कहानी बनाएंगे, तो हम जाएंगे डायरेक्टर बनने। तब पता भी नहीं था कि FTII नाम का कुछ एग्जिस्ट करता है। इंटरनेट पे दुनिया खोल के पढ़ के पता चला हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूट है, लेकिन उसमें तैयारी लगेगी, रिटन होगा, अगर वो क्वालिफाई हुआ तो इंटरव्यू होगा, ये मतलब एक छोटा UPSC का छोटा सा फॉर्मेट। तो
0: उसकी तैयारी के लिए दीपाली यहाँ से एक्टिंग वैक्टिंग सिंगिंग विंगिंग सब छोड़ के चली गई पटना और तैयारी शुरू कर दी।
1: बिल्कुल,
0: ये कहानी बहुत गजब की है भाई। इतने टर्न एंड ट्विस्ट हैं। पिताजी तैयारी करवा रहे हैं, फिल्में देखी जा रही हैं।
1: हाँ फिल्में देखी नहीं, हमें तो ये भी नहीं पता था कि फिल्म इंस्टीट्यूट में

0: बताने के लिए फिल्में देखी जाती हैं। आप सोचिए, हमको बहुत आश्चर्य होता है कि कितने कमाल के हैं ये लोग जिनके बीच हम पैदा हुए हैं। इनको कुछ नहीं पता है,
1: नहीं, ये एक
0: लेकिन ये लगे हुए हैं। लगे हुए हैं। हमको भी नहीं पता है कि FTI में घुसने के लिए फिल्में देखनी पड़ेंगी। हमको ये पता है क्रिएटिव होना जरूरी है, एंड आई एम क्रिएटिव। तो जब मेरा रिटर्न हुआ तो उसमें जो जनरल नॉलेज मेरा अच्छा था, जनरल अवेयरनेस अच्छा था, तो वो चीजें तो सॉर्टेड थी। क्रिएटिव राइटिंग करना था जो डायरेक्शन के कोर्स के लिए था, वो सॉर्टेड थी। किसी एक फिल्म की समीक्षा अगर आ जाए, किसी स्पेसिफिक फिल्म का एक सीन डिस्क्रिप्शन आ जाए या एडिट पे बात आ जाए, वहां हम थोड़े अटकते, बट आई वॉज रेडी कि उसमें भी हम कुछ बात बना के लिख सकते हैं, इतने भी बेवकूफ नहीं है। वर्ल्ड सिनेमा तो पता भी नहीं था, सिनेमा देखना भी नहीं आता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि हमेशा उसको एज अ एक्टिंग शूटिंग वही दिमाग में रहा। इसलिए शायद हम थोड़े डेड इमोशन थे, मतलब मेरे अंदर जो जज्बात थे ना वो काफी डेड थे। तो तैयारी शुरू की हमने वर्ल्ड सिनेमा के बारे में सिर्फ पढ़ के, क्योंकि फिल्में नहीं थी मेरे पास देखने को। मेरे लैपटॉप में वो CD प्लेयर नहीं था, मेरे पास वो कंप्यूटर नहीं था जिसमें हम CD लगा के वर्ल्ड सिनेमा की बात देख
1: लें या किसी अलग अलग जरिए से सिनेमा को डाउनलोड कर लें और जमा कर लें और
0: वो
1: शान
0: सब
1: बगा
0: कुछ
1: लें।
0: भी नहीं आता था। मेरे हाथ में बस इतना ही था कि वो रिटर्न क्लियर करना है जैसे भी, क्योंकि हमको पता था कि अगर हम इंटरव्यू तक पहुंच गए हमको उसमें से नहीं छाट सकता है। तो आई थिंक आई वॉज वेरी लकी। एक्चुअली मेरा विश्वास था कि हम कभी रिजेक्ट नहीं होंगे, वो रियलिटी शो हारने की वजह थी, क्योंकि हम मन से हारे हुए थे। एक लड़की नहीं जीत सकती थी, इसलिए वो लड़की नहीं जीती। एक लड़की सोच रही थी वो FTI में निकाल लेगी, इसलिए उसने निकाल लिया। यही है, मन के हारे हारे मन के जीते जीत, ये सत्य है।
1: यहाँ एक गाना सुनते हैं, क्योंकि बहुत देर से हम बात कर रहे हैं, तो अब दीपाली कौन सा गाना सुनाएगी?
0: अब दीपाली के जीवन में जो मोड़ आया है वो है

0: इजाजत तक का सफर तय कर लिया। यहाँ से दीपाली चली आती है पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट, सिलेक्शन हो जाता है।
1: करेक्ट।
0: इंटरव्यू सब तोड़ फाड़ करती हुई,
1: सब
0: है ना,
1: सब सब।
0: तो मतलब दीपाली
1: जो लिस्ट निकलता है वो लिस्ट में सबसे नीचे का नाम है, क्योंकि वो रैंकिंग के बेसिस
0: सबसे नीचे का नाम है।
1: 12 सीट होते हैं, जिनमें से 6 जनरल कैटेगरी और 6 रिजर्व्ड कैटेगरी। तो वो जो 6 सीट है उनमें सबसे नीचे मेरा नाम है, मतलब हमने जस्ट क्वालिफाई कर लिया,
0: बच गए। और कौन कौन लोग हैं हमारे साथ वहाँ पर
1: अलग अलग? अच्छा, ये एक अच्छी बात थी, 12 स्टूडेंट्स में से हर स्टूडेंट अलग स्टेट का था।
0: बिल्कुल।
1: ये आई थिंक ये कॉन्शियस प्रोसेस है उनका सिलेक्शन का, क्योंकि मेरे बैच में केरलाइट भी था, कर्नाटका भी था, हम बिहारी, यूपी, दिल्ली, मध्य प्रदेश। इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन स्टेट। तो अब क्या होता है, आप अपने प्रांत में, अपने स्टेट में अपने ही तरह के लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं। शायद इसलिए FTII जैसा इंस्टीट्यूट बनता है, बहुत बहुत सोच विचार के। अभी इस वक्त हम यहाँ बैठे हैं तो हमको FTII के मेरे दिन याद आ रहे हैं।
0: अच्छा,
1: वहाँ भी ऐसे ही स्टूडियोज हैं। बिल्कुल। यही है ही वो।
0: बिल्कुल।
1: वो प्रभात खबर स्टूडियो हुआ करता था,
0: प्रभात स्टूडियोज
1: शांताराम जी का
0: जी।
1: तो अभी जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल इस ऑफिस की तरह ही, हमारे ऐसे ही स्टूडियोज होते थे, हमारे ऐसे ही क्लासेस होते थे। तो बट द बेस्ट पार्ट वॉज कि सारे बच्चे अलग अलग स्टेट के थे, सारे ग्रेजुएट्स थे। तो आप एक उम्र, अब आप एक जीवन का एक नजरिया, एक एक्सपीरियंस, एक एहसास, आपका दिल टूट चुका है, अब तक आपको प्यार हो चुका है, आपका ब्रेकअप हो चुका है, आप जीवन में फिनेंशियल स्ट्रगल

0: चुके हैं, आपने वो सारी चीजें, क्योंकि अब आप ग्रेजुएट हैं तो आपने एक उम्र तो जी ली है, एक हिस्सा एक्सपीरियंस कर लिया है, और उसके बाद आप पहुंचते हैं एक ऐसी जगह जहां वर्ल्ड सिनेमा की बात हो रही है, और सिर्फ सिनेमा, सिर्फ टेक्निकल बातें नहीं हो रही है, ये देख के समझ आ रहा है कि जो मेरे अंदर जो एहसास चल रहा है, इटली में बैठा 100 साल पुराना डायरेक्टर भी उसी एहसास को दिखाने में कामयाब हो रहा है।
1: बिल्कुल,
0: ये समझ आया, सिनेमा इज केपेबल, व्हाट इज सिनेमा केपेबल ऑफ, ये एफटीआई ने समझाया कि इंसान जीना कैसे है, पर्सपेक्टिव क्या होता है,
1: देयर इज नो बाउंड्री इन ह्यूमन इमोशंस,
0: देयर इज नो बाउंड्री, और आप अपने जीवन का कैमरा कहाँ रख रहे हैं और अपने जीवन को किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं,
1: बहुत सही,
0: नॉट जस्ट लिटरली फिजिकली आप कैमरा कहाँ रख के एक सीन लगाते हैं, उसके पीछे के जो कारण होते हैं ये तो हम सोचते ही नहीं है कि क्यों इस वक्त हम इस लड़ाई को छत से देखा जा रहा है, इस लड़ाई को डायरेक्टर ने नीचे से क्यों नहीं दिखाया, ये चीजें, ये जो पर्सपेक्टिव है जो फिजिकली और नॉन फिजिकली मेंटली ऑल्सो हमको समझ आया कि अच्छा नजरिया होता क्या है एक्चुअली, ये एफटीआई ने सिखाया हमको,
1: और यहाँ वर्ल्ड सिनेमा जो है वो पूरी तरह से अपने कब्जे में था, कुछ भी देख सकते थे, डिस्कस कर सकते थे,
0: बिल्कुल, हमारे जो फैकल्टी थी, जो विजिटिंग फैकल्टीज थे, जो टीचर्स थे, वो बड़े समझदार लोग थे, बहुत सहनशील समझदार लोग थे, क्योंकि ये सारे जो बच्चे आए थे ये सब अपने अपने घरों से लड़कर आए थे, मतलब कोई इंजीनियर है इंजीनियरिंग के बाद पहुंच रहा है, किसी ने जो, ये वो बच्चे थे जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है और वो वेट कर रहे थे उस दिन का जब वो अपने माँ बाप को बोलेंगे अब तो मेरा चलेगा,
1: बिल्कुल, बिल्कुल,
0: जब उन्होंने थोड़े से पैसे भी कमा लिए हैं कहीं से कैसे, तो ये एक ऐसा बाउंड्री था जो फिजिकल बाउंड्री था एफटीआई का, जिसके अंदर सिर्फ आजाद पंछी थे,
1: और ये सारे सिनेमा के जुनूनी लोग
0: ये
1: थे।
0: सब सिनेमा लवर्स, और इनकी बातें, इनके डिस्कशंस, इनके एक्सपीरियंसेस, इनका जीवन को महसूस करने का तरीका ही अलग था, ये देखते ही कुछ और थे, जो हम लोगों को नॉर्मल दिखता था ये उल्टा देखते थे उन चीजों को, और ऐसे लोगों के साथ मेरा सौभाग्य हुआ कि हम इन लोगों के बीच में गए, मेरे जैसा सीधा चलने, सीधे रास्ते चलने वाला इंसान एक बोले तो एक खुले पिंजरे में घुस गया था, और वहां पर लोगों का सिनेमा देखने का तरीका, उस पर डिस्कशंस, अपनी फिल्में बनाना है आपको, आपके अपने प्रोजेक्ट हैं, ये जो मेरा एक साल का जर्नी था एफटीआई में, आई डिड टेलीविजन डायरेक्शन फ्रॉम देयर, एक साल बाद जो नाम सबसे नीचे था वो वहां से टॉपर बन के निकलता है,
1: वाह वाह वाह,
0: और हमारे यहाँ जो टॉपर होता था उसको विधु विनोद चोपड़ा स्कॉलरशिप मिलती है, सो आई रिसीव्ड दैट स्कॉलरशिप इन एफटीआई, तो मेरे लिए आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा वो जर्नी होगा,
1: पूरा ट्रांसफॉर्मेशन,
0: पूरा पूरा, मतलब दीपाली कई फेजेस में बनी और टूटी है, एफटीआई उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत, दीपाली को अडल्ट बनाया एफटीआई ने इन टर्म्स ऑफ अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड ह्यूमन इमोशंस, वहां पे हम पहली बार रोना सीखे पब्लिकली,
1: अच्छा,
0: दूसरों के सामने भी रोया जा सकता है, यह अभी तक नहीं हुआ था मेरे साथ, और एफटीआई के अंदर पहली बार हुआ जब हम किसी के साथ बैठकर कुछ बात करते हुए और हम रो पाए, और वो एक इतना कैथार्टिक फीलिंग था, वो इतना अच्छा है महसूस हुआ जब ये
1: हल्का
0: हुआ,
1: हो जाना,
0: इतना हल्का महसूस हुआ, तो समझ आया कि जीवन कुछ और ही है, मतलब आप कुछ और ही समझ रहे थे अब तक।
1: तो ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था, और वहां पूना में सिनेमा की दुनिया में रहकर एक तरह से खुद से मुलाकात हुई,
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने,
1: यहाँ एक गाना सुन लें,
0: बिल्कुल,
1: उसके बाद मुंबई की तरफ आते हैं,
0: बिल्कुल
1: कौन सा गाना होगा
0: लिए

0: एकदम सत्य है ये।
1: दीपाली के साथ बिल्कुल यही हो रहा था,
0: बिल्कुल यही हो रहा था।
1: ये जावेद साहब की बोले हैं।
0: हाँ।
1: मशाल फिल्म का गाना है और हृदयनाथ मंगेशकर का म्यूजिक है
0: जी,
1: है ना, सुनते हैं।

0: लाल।
1: यहाँ से फिर बम्बई आ जाते हैं।
2: बिल्कुल।
1: और यहाँ चूंकि अब कैमरे के पीछे रहने की ट्रेनिंग हो गई है,
2: करेक्ट,
1: तो अब क्या करना है?
2: अब टारगेट तो यही था कि बड़े किसी डायरेक्टर को पकड़ लिया जाए और उनके असिस्टेंट बन जाते हैं, जीवन धन्य है यहाँ से। अब यही तो अब करना क्या है,
1: एफटीआई
2: करके सिनेमा बनाना है, करेक्ट। तो एक साल वही छोटे मोटे एड्स, म्यूजिक वीडियोस असिस्ट करने का काम शुरू हो गया,
1: कॉर्पोरेट फिल्म्स वगैरह,
2: कॉर्पोरेट फिल्म्स, एडवर्टाइजमेंट्स, म्यूजिक वीडियोस, या यू नो किसी बड़े डायरेक्टर के यहाँ प्री प्रोडक्शन का 15 दिन में लोगों की जरूरत है, क्योंकि अभी नाम नहीं है मेरा। वो इंडियन आइडल वाली दीपाली यहाँ नहीं चलने वाली है,
1: बिल्कुल,
2: वो जो फेमस वाली है जो सिंगर बनी थी या जिसने होस्ट किया था। और एक अच्छी बात क्या हुई मेरे साथ, जो कि उस वक्त अच्छी नहीं लगती थी, कि कोई हमको पहचानता ही नहीं था, क्योंकि मेरा जो चेहरा है वो इतना एवरेज इंडियन फेस है कि आप यू नो जैसे एक एक एक पर्सनालिटी होती है ना, एक अलग किस्म की खूबसूरती, जैसे ऐश्वर्या राय है, वो एवरेज इंडियन ब्यूटी नहीं है, वो स्टैंड आउट इंडियन ब्यूटी है। वो कहीं भी खड़ी होंगी हजारों लाखों की भीड़ में भी तो आपकी नजर उनके चेहरे पर चली जाएगी, पर एक एवरेज इंडियन बिल्ट फेस मेरा वो है। तो रियलिटी शो से निकले भी थे तो भी लोग हमको जल्दी पहचान नहीं पाते थे, क्योंकि मेरा वैसा कुछ है नहीं, वो पहचानने वाला कोई फीचर नहीं है स्ट्राइकिंग, तो वो मेरे फेवर में काम करता था, क्योंकि फिर हमको ताने कम सुनने पड़ते थे कि अरे तुम तो रियलिटी शो जीत के या

0: जो भी करके आई हो तो तुम ये काम क्यों कर रही हो, तो ऐसा भी सुनने मिलता था।
1: एक एनोनिमिटी मिली,
0: एक एनोनिमिटी मिली, और वो एक अज्ञातवास जो मेरे जीवन का बहुत सुंदर अज्ञातवास था, क्योंकि अब हम उस लेवल पे थे कि हम कुछ भी कर सकते थे, कोई नहीं पहचानता है हमको। वो इतना एम्पावरिंग होता है, क्योंकि जब आप जब जस्ट रियलिटी शो से निकले तो आपको सब जान रहे हैं। अगले एक दो साल तो डेफिनेटली आपको लोग जान रहे हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप फाइव स्टार्स में जा रहे हैं आ रहे हैं, आप रोज फ्लाइट ले रहे हैं, आपका जीवन अलग चल रहा है, और अचानक से करियर जो है वो धीरे धीरे अपना मोड़ लेने लगता है, और आप एक दिन डिसाइड करते हैं कि अब हम कुछ नहीं करेंगे। और जब आप FTI से निकलते हैं तो आपकी ट्रेनिंग ऐसी है कि आप यू आर रेडी टू बी अ स्पॉट बॉय टू अ डायरेक्टर, आप उस बीच में कुछ भी हो सकते हैं, आप
1: बहुत सही
0: खुल चुके हैं, आप बिल्कुल निर्लज्ज हो चुके हैं, आप हर काम करने को तैयार हैं, क्योंकि टारगेट ध्येय है कि आपकी फिल्म बननी चाहिए।
1: हाँ।
0: या जिसकी फिल्म बन रही है उसका पूरा सहयोग होना चाहिए,
1: बिल्कुल
0: वो पैशनेट लोग ही कर सकते हैं,
1: टीम की तरह।
0: अब जो इंडिविजुअल दीपाली, इंडिविजुअलिस्टिक दीपाली थी, अब वो समाज के साथ जिसके कोई दोस्त नहीं होते थे, अब उसके दोस्त बनने शुरू हुए, अब दीपाली एक अलग आयाम में घुस रही थी अपने, और यहाँ पे दोस्ती आई मेरी लाइफ में। इसके पहले तक हम बहुत अकेले थे, बहुत अकेले थे। तो जब हम मुंबई वापस आए तो क्योंकि बैचमेट्स, और FTI का तो हम मशहूर हैं बैचमेट्स, और
1: अलुमनाई
0: हमारा काफी तगड़ा है,
1: वहाँ एक तरह का कनेक्शन जो है जोरदार होता है,
0: बहुत जोरदार होता है। और वो क्या है, वो बिल्कुल इतना इतना गहरा है कि समय की सीमा उसमें मायने ही नहीं रखती। कम से कम समय में आप इतनी गहराई से, क्योंकि काम ही ऐसा है, आप एक काम ही ऐसा कर रहे हैं कि आप जुड़ेंगे ही उस लेवल पे। तो वहां से मेरी लाइफ में दोस्ती शुरू हुई, दोस्तों के साथ काम शुरू हुआ, कुछ ऐसे दोस्त बने जो मतलब मेरे जीवन से भी प्यारे हैं, मेरे जान से भी प्यारे हैं मेरे दोस्त। वो लोगों के साथ मुंबई में मेरा असिस्टेंट बनने का सपना और स्ट्रगल और जो भी रास्ता है वो शुरू हो गया था, और एक साल तक ये बड़ा अच्छा चला। इस बीच एक दिन कैफी आजमी साहब की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं हर साल, शबाना आजमी जी और बाबा आजमी जी, दे वर लुकिंग फॉर सिंगर्स जो गाना गा सके उनके बर्थ एनिवर्सरी पे, और एक अच्छा मंच कई नए टैलेंट को भी जगह देने का, क्योंकि वो आंगन ऐसा है कि यू नो हर कोई वहां बैठना चाहता है। वो आप गए होंगे आई एम श्योर जानकी कुटीर में,
1: पृथ्वी हाउस में होता है,
0: पृथ्वी हाउस में, पर पृथ्वी हाउस के ये इधर जो जानकी कुटीर है उसका नाम, हाँ उस वो उन्हीं का आंगन है जहाँ कैफी साहब रहते थे, तो वहीं पे एक छोटा सा स्टेज लगा के, और
1: वहां करते हैं।
0: उनकी मंशा भी यही है कि नए टैलेंट को, क्योंकि वो इतना प्योरिटी से और इतनी शिद्दत से और इतने बड़े लेवल का कार्यक्रम है कि इतने बड़े बड़े समझदार गुणी लोग वहां बैठते हैं कि वहां कोई भी गाने को तैयार हो जाएगा। बट ये देखिए, ये उनका बड़प्पन है कि उनको नए टैलेंट चाहिए, वो चाहते हैं कि वो भी अपना टैलेंट नए लोग भी दिखा सके। और मेरे एक दोस्त को, क्योंकि हम गाते थे तो उसको पता चला कि बाबा आजमी को असिस्ट करता था, तो उसने बोला चल तू भी चल, गाना चाहिए उनको, सिंगर्स चाहिए। तो हम बोले मेरा क्या काम है वहां पे, हम तो शोज वोज करते हैं, अब उनको अच्छे सिंगर चाहिए होंगे। नहीं नहीं तू चल, और हम पहुंचे और बाबा आजमी आए बाहर। एक तो वो दिखते भी कैफी साहब जैसे ही है तो काफी ऐसा फील हो रहा था, ओ माय गॉड यू नो बाबा आजमी। एंड उन्होंने बोला आप सुनाइए, आप क्या सुना सकती हैं। तो हमने गाना गाया कैफी साहब का, वक्त ने किया क्या हंसी सितम। बाबा आजमी डिस्टर्ब हो गए, उन्होंने बोला आप करती क्या है, क्योंकि आप जिसके साथ आई है वो तो मेरा असिस्टेंट है, तो ये आपका दोस्त है, तो मतलब आप सिंगर तो नहीं है, तो आप करती क्या है। तो आई सेड कि सर हम अभी डायरेक्शन पास आउट हैं FTI से और काम ढूंढ रहे हैं, तो आप अपना जीवन इसी में व्यर्थ कर देंगी, मतलब आप गाना क्यों नहीं गाती हैं। तो आई सेड सर वो एक डॉक्टर ने बोला था कि हम गाना नहीं गा सकते हैं जीवन भर। तो बोले वो पागल है, वो डॉक्टर पागल है जिसने ये बात आपको बोली है। अब हुआ ये कि वो इतने साल में ये दीपाली की आवाज हील कर चुकी थी, ये तो कॉमन सेंस की बात है जो दीपाली के पास नहीं था क्योंकि आवाज तो पैदा हुई है जिसके साथ आप, वो आवाज तो वैसी ही रहेगी ना, गला खराब हो सकता है, आवाज नहीं जा सकती छोड़ के, आप पैदा हुए उसके साथ, उस मशीन के साथ। तो जब बाबा आजमी ने ये बात बोली ना, तो उनके एक अनजान इंसान, आप उनको पर्सनली नहीं जानते हैं, लेकिन वो अगर आपके लिए इतनी शिद्दत से कुछ महसूस कर रहा है तो वो उनकी आंखों में दिखता है। तो बाबा आजमी की आंखों में दिखा कि उनको इस बात की छटपटाहट हो गई कि ये बच्ची अपना जीवन बाकी कामों में व्यर्थ कर क्यों रही है जब ये ऐसा गाती है। और ये बात मेरे साथ रह गई, और उन्होंने उस साल हमको वहां मौका भी दिया कैफी साहब के
1: महफिल में
0: ये गाना

0: उनका सबसे फेवरेट गाना है बाबा आजमी सर का, कुछ दिल ने कहा कुछ भी नहीं,
1: अनुपमा फिल्म का
0: अनुपमा
1: गाना।
0: फिल्म का। और वो उनको मेरी आवाज इतनी पसंद आ गई कि उन्होंने बोला कि इस गाने के लिए भैया मार्केट में बहुत बवाल होता है कि हम गाएंगे तो हम गाएंगे, सिंगर्स लूटने के लिए दौड़ते हैं, बट आई वॉन्ट टू गिव दिस सॉन्ग टू यू।
1: वाह वाह वाह
0: ये
1: वाह,
0: कॉन्फिडेंस जब बाबा आजमी सर ने मेरे अंदर दिखाया तो हमको लगा कि यार ये हम सच में कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं
1: फिर
0: ना।
1: से एक दो रहा गया।
0: फिर एक दो रहा गया,
1: आगे बढ़ने से पहले वही गाना सुनना चाहिए।
0: ले

चुना आपने गाने के लिए, बहुत शानदार गाना है और ये इस गाने के सबसे अच्छे अंतरों में से एक है, पलकों की ठंडी सेज पर। क्या बात है, क्या बात है।

0: ऐसी भी बातें होती हैं और दीपाली की जिंदगी में ऐसी ही बातें होती हैं। गाना वापस लौट गया था
1: बिल्कुल। बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जानी मानी गायिका दीपाली सहाय से यूनुस खान की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस बातचीत का दूसरा भाग। इसका तीसरा भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते बॉम्बे टॉकीज में। जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज। चलने से पहले आपको बता दें इस कार्यक्रम में संपादन सहयोग प्रभा भटनागर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
2: डूपर है।

0: प्रस्तुत है छाया गीत। छाया गीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को पूजा नारायणिया का नमस्कार।
1: ओ जब याद आए,
0: किसी की याद इतनी गहरी होती है कि आंखें बंद करो तो सामने वही चेहरा उतर आता है। यादों का दर्द भी उतना ही गहरा होता है। वो हंसी सुनाई देती है, वो बातें याद आती हैं, दिल फिर उसी बीते हुए पल में लौट जाता है। समय आगे बढ़ जाता है मगर मन वहीं ठहरा रह जाता है जहां आखिरी बार साथ थे। ये रिश्ते खत्म होकर भी खत्म नहीं होते, यादों में सांस लेते रहते हैं और यादें रात की खामोशी में एक दर्द भरी धुन बन जाती हैं।
1: बहुत

उसके जाने के बाद भी जैसे घर की दीवारों पर उसकी आहट ठहरी हुई है। हर शाम दरवाजे की ओर देखता ये मन, जाने क्यों आज भी उसकी राह तकता है। बहुत कुछ कहना था उससे, मगर शब्द होठों तक आकर लौट गए। अब वही अधूरी बातें रातों में साथ जागती हैं, और उसका इंतजार धीरे धीरे एक गीत बनकर भीतर गूंजता रहता।

0: उसके बिना सब कुछ तो है, मगर फिर भी कुछ भी पूरा नहीं लगता। आंगन वही है, मौसम वही है, जान भी वही है, बस उसे देखने वाली आंखों में अब पहले सी चमक नहीं। कभी लगता है उससे बिछड़कर उसे नहीं, अपने भीतर का एक हिस्सा खो दिया है। जो बातें उससे करनी थी, अब वह होठों की खामोशी में कैद है। और यही अधूरापन हर रात दिल से एक नया गीत लिखवाता है।
1: कुछ दिल ने सुना।

विरह की सबसे गहरी आवाज खामोशी ही होती है, जिसमें कोई शिकायत नहीं होती, फिर भी हर सांस किसी दर्द की कहानी कहती है। मन बार बार पूछता है, क्या उसे भी कभी महसूस होती होगी? क्या किसी शाम उसका दिल भी अचानक उदास होकर याद करता होगा? इन अनकहे सवालों के बीच सिर्फ तन्हाई एक जवाब बनकर सामने आ बैठती है।

दिल जानता है कि बीता हुआ पल लौट कर नहीं आता, फिर भी आंखें किसी चमत्कार की उम्मीद करती हैं। कभी लगता है अचानक वो सामने आ जाएगा और कहेगा, मैं वापस आ गया हूं। लेकिन फिर यह मन अपनी ही कल्पना पर मुस्कुरा देता है और आंखें चुपचाप भीग जाती हैं। प्रेम में किसी को भूलना उतना मुश्किल नहीं होता जितना उसके लौटने की उम्मीद को छोड़ना होता है।

दिल में याद बनकर रह जाती हैं। उसका आखिरी बार मुड़कर देखना आज भी आंखों में एक मंजर की तरह ठहरा हुआ है। तब कहां पता था कि वह पल हमारी कहानी का आखिरी पन्ना बन जाएगा। काश उस पल को वहीं रोक लेते हम, काश आज साथ होते हम।

छाया गीत का आज का सफर आपने तय किया पूजा नारायणिया के साथ। छाया गीत के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। अब आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

and you don't lie to me. श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म धुरंधर द रिवेंज से, आवाजें वैभव गुप्ता, शहजाद अली, टोकन, शाश्वत सचदेव की थी। गीत के बोल टोकन और ट्रेडिशनल थे, संगीतकार शाश्वत सचदेव।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म डॉन से, आवाज़ें अलीशा चिनॉय, महालक्ष्मी और सोनू निगम की थी। गीत के बोल लिखे थे जावेद अख्तर ने और संगीत शंकर एहसान लॉय का।
1: ये है विविध भारती, विविध भारती देश का रेडियो।
2: ओ मेरे पिया दे रंग पिया है महासटैली।
3: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी,
1: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
4: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छपकर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल, तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब और नरगिस जी।
3: विविध भारती पर हर पल है खास।
1: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
5: आज के फनकार।
3: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
5: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
1: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।

श्रोता, ये गीत आपने सुना फिल्म बागी 4 से, आवाज जोश ब्रार की थी। गीत के बोल कुमार जगदीप और जोश ब्रार के, संगीत सलामत अली मटोई और जोश ब्रार का था।

श्रोताओं, गीत आपने सुना फिल्म अक्सर से, आवाज़ें हिमेश रेशमिया और सुनिधि चौहान की थी। गीत के बोल समीर के और संगीत हिमेश रेशमिया का। आइए सुनते हैं अब ये गीत।

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: इस प्रोग्राम के प्रायोजक सन खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्रालय भारत सरकार।
4: कृषक के परिश्रम देशेर अन्नेर भंडार समृद्ध है से कृषक देर पाशे रयेछे किसान क्रेडिट कार्ड চাষের জন্য বীজ সার কীটনাশক সেচ কৃষি যন্ত্র এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় খরচ মেটাতে সহজ শর্তে ঋণের সুবিধা পাওয়া যায় কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে। কিষাণ ক্রেডিট কার্ড পেয়ে সময় মতো ঋণ পেয়েছি, এখন চাষের কাজ সহজ হয়েছে, ফলনও বেড়েছে। আপনিও আজই নিকটস্থ ব্যাংক শাখা বা কৃষি দপ্তরে যোগাযোগ করুন। কিষাণ ক্রেডিট কার্ড সম্পর্কে বিস্তারিত জানুন এবং এর সুবিধা গ্রহণ করুন। কিষাণ ক্রেডিট কার্ড, কৃষকের শক্তি, সমৃদ্ধ কৃষি, বিকশিত ভারত। কিষাণ ক্রেডিট কার্ড কৃষকের উন্নয়নে এক নির্ভরযোগ্য সহযাত্রী।

0: अहो फडके सन, तो फोन कशा कॉक दुखतो आहे फैमिने?
1: अहो कॉक दुख कशा आहे या सगळं नाही दे बा.
0: हॅलो
1: हॅलो,
2: द पर्सन यू आर स्पीकिंग विथ हॅज पुट युअर कॉल ऑन होल्ड, प्लीज स्टे.
1: हॅलो
0: कोण का?
1: हॅलो
0: अहो मंजू मालिया. हॅलो
1: हॅलो
0: हॅलो
1: हॅलो ताकूक निने तामो सुमुंग सादी.
3: ओ मॅडम बेलेक जन खुलम का तार नव बेलेक जन सांजा का हाम आं
1: सांजा का हाम
3: करजोला दिरिज आं खुनाना मुसमान इनके तार मॅडम खुखरे बडा मिनिसिनी ताकूक हालिम दे बरमा बाय
0: सेलिम दा हालिम
3: आं बेलेक खुनाना मुसु दहाता मॅडम
1: हालिम हालिम दा बरमा
3: हालिम दा बरमा निता
1: बेलेक आ आ आ
3: कृपया दा खुनाना मुसु दहाका
1: आ आ বেলেগ খানা খাম
3: বাইমানি বেলেগ খানা খানা মানে কামা খাই চিনি তাকুক দে কুমার দিয়ে খাই থাকি.

0: आओ फर्के सुन रसम खाना लगे जमीनी देवर मन खोकते
1: आओ खापांगी ताकु बुकुक शां तिनी नी कोक तिनी जापा पंडा न चुंग और न मथक लाइसी हो न फाइने हाथी वो नरक निबस कंगो चुंग तवेशा शपाई फिने आई नरक न खा कुफुर हम जमुंग या फरोई और न बचा खा खुलुमका
0: खुलुमका आप फरीके संग तब खाना लाये ना सेवो को बरक तलंग मने कोग्रो आईआईटी अगर तला आरो असिस्टेंट प्रोफेसर अजुक थाया बेबगे बुक सातंगो काईसी अवन बगे रंगमारी नंगना कंप्यूटर साइंस बा आईटी ओनर गे एमफिल क्लाजिया गेखबा पीएचडी डिग्री क्लाजियागना नांनाय उमर हंकांके बिसि ब्रिसिनि बिसिंगोंना नांनाय दै खातिजाक एसटीए सिरं बागंगे किसाज गबां फानो जोगनानै आरो साजाका अनलाइन बिसिंते कयब्लेनानि पाइथाक सालंके ओ सेप्टेम्बर तालनि सालजि सालनि बिसिं रहना नांनाय सैमं आमजोंमं इन्टारभिउ नि थायरक दै सालमारि रखनके कल लेटारनि बिसिंते सार जागनानै साजाका Pegawai setongo Assistant Commissioner Kendriya Mantrago UPSC Amjongni bisingtei abotrang jangnai bebagai buksa tongo KHRC asuk thai ringmaringke BA BCom BSc BCA BE BTech amnaragi graduate degree passing jangna nangnai obongke उमर उना नंगना बिसि थामसि बानि बिसिंगो दै खादिजा ग्रोंनि बिसिंगो अंके जे राइजा तै तंगनि आबोनं थेबा जागनाय अनलाइन नि बिसिं तै कयब्लेनन पाइथाक साल अंके अबो ओ सेप्टेम्बर तालनि न साल जिसा साल नि बिसिं रहना नांनाय दै इन्टारभिउ नि थाय साल मारि रखं के अबो बहायन कलेटन बिसिं तै न सहाय मानानि साजाखा तेके थतंगो रेल लो जूनियर इंजीनियर बेबगई और हंके ब्रिशाई निजीसुको आसुक थाय रंगमार के डिप्लोमा बी बीटेक बीएससी पास जगना नाय तै उमर हंकंके बीसीसी सरनिसि बीसी थामसि थाम उना नाय ऑनलाइन एडमिशन तै कयब्लेनानि पाइथाक सालनखबो सेप्टेम्बर तालनि न ओ तालनि साल जि थाम सालनि बिसिं

रहना नांनाय कम्पिउटार नि बिसिंते आम जमुं नाय आगरतला न खबै हाक्तर नि जत थायो तै छालमारि रखन गबो बहिनो वेबसाइट एखबा कॉल डाटा नि बिसिंते सायमाना नांनाय साजाखा फरिगेसन पाइथागो तेगेसर सामुं खनानिया लायना जामिनी देवर मनी खोकते

0: कृषि और पशुपालन भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार और आत्मा है। हमारे अन्नदाता जहां एक ओर अपने कठोर परिश्रम से अनाज उगाकर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, वहीं पशुपालन के जरिए अपनी आय भी बढ़ाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार इन दोनों क्षेत्रों को सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य करते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की मदद की जाती है, जिससे 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को अब तक 3.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिली है।
1: पीएम किसान सम्मान निधि भारत के किसानों का बहुत बड़ा संबल बनी। उनके छोटे छोटे खर्चों के लिए ये किसान सम्मान निधि बहुत काम आ रही है।
0: पीएम किसान के 18वें किस्त के रूप में आज प्रधानमंत्री द्वारा 9 करोड़ 40 लाख से अधिक पात्र किसानों को 20,000 करोड़ से अधिक की धन राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है। इसी के साथ नमो शेतकरी महासम्मान निधि की भी 5वीं किस्त जारी की जा चुकी है, जिसमें महाराष्ट्र के 91 लाख से अधिक किसानों को 2,000 करोड़ से अधिक का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। भारत सरकार की ऐतिहासिक 10,000 FPO योजना के अंतर्गत 9,000 से अधिक FPO का पंजीकरण सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है, जिनमें करीब 23 लाख मेहनतकश किसान शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2020 में शुरू की गई एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत किसानों को 2 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाती है, जिससे विकसित भारत की आधुनिक कृषि अवसंरचना का विकास हो रहा है। वर्तमान सरकार गठन के 100 दिनों के भीतर 6,500 करोड़ की लागत से 10,000 से अधिक परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। इसी अवधि में 7,516 परियोजनाएं पूरी हुई, जिसमें 1,929 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि शामिल है। भारत सरकार के राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत देशी नस्ल के गायों एवं भैंस की गुणवत्ता में तेजी से सुधार एवं दूध उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी से देश में श्वेत क्रांति द्वितीय चल पड़ी है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान से 2 बड़े कदम आज देश को समर्पित किए जा रहे हैं। गौ सॉर्ट स्वदेशी सेक्स सॉर्टिंग तकनीक से बछड़ी पैदा होने की सफलता दर 90% है, जिससे 8 करोड़ डेयरी किसानों को लाभ होगा। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और ICAR NBAGR के साझा वैज्ञानिक कार्यक्रम से विश्व में पहली बार देशी गाय और भैंस में अच्छे नस्ल की त्वरित पहचान के लिए गौ चिप और महिष चिप नामक जेनोमिक चिप तैयार कर लिए गए हैं, जिनसे नस्ल सुधार कार्यक्रम दुगनी तेजी से चल पाएंगे। ये सुविधा कोई भी किसान NDDB के काफ लैब एवं KLDB के लैब से उचित दाम पर ले सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में कृषि और पशुपालन के समन्वित विकास से भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और सरकार किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

0: এতক্ষণ শুনলেন অতুল প্রসাদের গান, শিল্পী ছিলেন সুমনা রায়, আকাশবাণী কোলা শহর। এখন দিল্লি কেন্দ্র থেকে প্রচারিত বিশ্ব সংবাদ রিলে করে শোনানো হচ্ছে।
1: গুড ইভিনিং, দিস ইজ আকাশবাণী, আই এম অমৃত ভূষণ উইথ দ্য ওয়ার্ল্ড নিউজ। The headlines. Prime Minister Narendra Modi asserts that 7.8% GDP growth amid global uncertainty is proof of India's economic resilience. India and Nepal continue joint operation to rescue people trapped inside Chilime tunnel in the Himalayan nation hit by flash floods. Russian President Vladimir Putin orders 72-hour pause in strikes on Ukrainian capital Kiev. And in China Masters Badminton, Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty reach men's doubles final. Prime Minister Narendra Modi today said India's 7.8% quarterly growth amid global uncertainty reflects its economic strength. He said India has come a long way from policy paralysis to policy dynamism. Addressing the gathering at the centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce, SRCC, in New Delhi, Mr. Modi said the world is watching India become the fastest growing major economy.
2: दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनने से हुए देख रही है। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। ये 7.8% की ग्रोथ भी ऐसे समय में आई है जब वेस्ट एशिया का युद्ध चल रहा है।
1: The Prime Minister said Sri Ram College of Commerce, SRCC, has given generations of students the opportunity to learn, grow and make a difference over the years. Mr. Modi said the college has distinguished itself over the years, making a mark for academic excellence.
2: जब कोई इंसान 100 वर्ष जीता है तो उसे अनुभवों का सागर माना जाता है और जब कोई संस्थान 100 वर्ष का होता है तो वो उपलब्धियों और प्रेरणाओं का महासागर हो जाता है। अपनी 100 वर्षों की इस यात्रा में एसआरसीसी ने पीढ़ियों को गढ़ा है, उन्हें उज्जवल भविष्य से जोड़ा है। जो आए उन्होंने पढ़ा और जो निकले वो गढ़े हुए निकले।
1: The Prime Minister added that together 140 crore Indians will make India both Vikasit and Atmanirbhar. India and Nepal rescue teams are continuing a rescue mission at the Chilime tunnel, removing heavy debris, water and mud from inside the tunnel. Ambassador of India to Nepal, Naveen Srivastav, said today work was also underway to construct an access road from nearby Syabrubesi to the tunnel portal to facilitate the rescue operation. In a social media post, Mr. Srivastav elaborated that given the difficult terrain and narrow valley, heavy helicopter usage is not